0: प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाषनिर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री

0: डॉक्टर एस जयशंकर अद्य प्रभृति मसल दश दिनाक यावत कतार बहरीन कुवैत ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवास काले विदेश मंत्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्ष नेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेश मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय संबंधानां दृढ़ीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य विंशति दिनांकाद् अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य विंशति दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा

कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुबह लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
1: जी मैं मेराज। दोस्तों को बता दें कि कंट्रोल रूम में आज हमारे साथ हैं नसीर अहमद और इरशाद अहमद नायको।
0: तो आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों इस म्यूजिकल जर्नी में। अपनी बात शुरू करने से पहले या यूं कहिए कि कुछ कहने से पहले एक शेर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
1: इरशाद,
0: देखिए मेराज, ये शेर कई दिनों से मेरे जहन में है। कुछ बात है पहले ये शेर, तो उसके बाद में वो बात शेयर करूंगी। शेर है कि चमन के रंग बू ने इस कदर धोखे दिए मुझको, कि चमन के रंग बू ने इस कदर धोखे दिए मुझको, कि जो के गुलबोसी में कांटों पे जुबा रखते।
1: वाह क्या बात है।
0: नबूजुन छा इंसान सिंस फितरत की इच बस अक आदत। दोस्तों सोचुन छुलो इसमें, साल गुजर गए कि हमारी वादी में पॉलीथीन पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
1: बिल्कुल सकीना जी, कमाल तो यह है कि हर घर
0: जी,
1: हर मोड़, हर सड़क, हर नुक्कड़, हर नदी, हर गांव और हर शहर में पॉलीथीन दस्तियाब है।
0: यानी मेराज ये हम हैं कि जहां और जिनकी बस्ती में कानून और कानून शिकनी एक ही शाख पे आशियाना बनाते हैं, साथ साथ चलते हैं और साथ साथ रहते भी हैं।
1: सकीना जी, खुदा झूठ न बुलवाए
0: जी
1: कि कानून और कानून शिकनी के इस रवादाराना रिवायत को बनाए रखने में हम अवाम और अरबाब इख्तियार बराबर के शरीक हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मिराज, लेकिन वन एच विन के कि कब हम होश के नाखून लें और कब हम अकल की जुल्फों को सवारेंगे।
1: और क्या देखा देखी में हम अपनी शादी ब्याह की रस्मों को प्लास्टिक से पाक अब भी रख सकते हैं, और क्या सियासतदान और पार्टियां भी अब प्लास्टिक के बोर्ड्स, बैनर्स और पॉलीथीन के झंडे

0: यहाँ पॉलिथीन के
1: जो झंडे हैं
0: इस्तेमाल नहीं करेंगे।
1: देखिए, बहुत खूब बात आपने कही। ये बात कहने का मकसद महाराज इसलिए आज मुझे लगे कि वन महोत्सव मनाया जा रहा है, ये पूरे एक वीक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक,
0: जुलाई के पहले हफ्ते
1: से। तो ये बात शेयर करने का मकसद, शादियों का सीजन है, वन महोत्सव है, सरसब्ज रोज़ तेले सोन नेचर ये लिए पॉलिथीन गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो पाने सड़कन पे शहरन मंस गामन मंस आबस मंस यपर गसान तपर पॉलिथीन
0: माहौल सोन गंदे का
1: गंद गसान। तो ये तो थे सी वन महोत्सव वीक मनावान छ, ये छ इस पर स्पर्ट आखफ तो मनो कात कर।
0: बिल्कुल,
1: पर प्रैक्टिकली करान के छ इस
0: सही
1: खांदर छ, प्रैक्टिकली क्या छ करान, पॉलिथीन को तो छ इस्तेमाल सब
0: दा सही
1: सरनी छ कोशिश। अगर तुम वो ये कि तो कर कहा कि सियासतदान और पार्टियां भी अगर प्लास्टिक और उनके जो बोर्ड्स होते हैं।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओह,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी पर रखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनके।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, क्लिक में, अरे वाह।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
3: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
2: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
3: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
4: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
5: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
6: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
7: सब्र रोशित सुलुम।
6: सुनते रहिए हमारी नशरियां
4: दुनिया के किसी भी कोने में। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
8: जी दोस्तों, लाइव शो पयामे सुबह में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
9: मेराज।
8: जी मेराज, अब हम एक अहम इशू पे बात करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि एक अहम बात पे बात करते हैं।
9: सही सही।
8: वो ये कि आज का इंसान एक ऐसी बे इंतहा दौड़ में मसरूफ है जिसमें रफ्तार तो बहुत है मगर संत का तायुन अक्सर धुंधला जाता है। देखिए, हर तरफ कामयाबी के पैमाने बदल चुके हैं। ज्यादा कमाना, बेहतर दिखना, दूसरों से आगे निकलना, ये सब हमारी तरजीहात बन चुके हैं। मगर इस तमाम तर जद्दोजहद के बावजूद दिल में खला, जहन में बेसकूनी और जिंदगी में थकन क्यों बढ़ती जा रही है?
9: बिल्कुल सकीना जी, इसका सादा सा जवाब यह है कि हमने जिंदगी को जरूरत से ज्यादा पेचीदा बना लिया है और इसी पेचीदगी का हल एक इंसान और सादा तर्ज जिंदगी में पोशीदा है।
8: देखिए, एक आसान आसान और सादा तर्ज जिंदगी में पोशीदा है सुकून। और ये अपने दोस्तों को मैं बता दूं कि सादा तर्ज जिंदगी दरअसल एक फलसफे हयात है जो हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की असल खूबसूरती सादगी में है, न कि नमूदो नुमाइश में। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखता है ना और जरूरियात को पहचानता है तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद मुतवाजन हो जाती है।
9: सकीना जी, हम अक्सर दूसरों की देखा देखी ऐसे अहदाफ मुकर्रर कर लेते हैं जो न हमारी शख्सियत से हम आहंग होते हैं और न ही हमारी असल ज़रूरत होते हैं। यही वजह है कि कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी हम मुतमहिन नहीं होते।
8: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। यही कहना चाहेंगे कि जदीद दौर में सोशल मीडिया ने हमारी सोच और तर्ज जिंदगी पर गहरा असर डाला है। हर वक्त दूसरों की खुशहाल और पुरतैश जिंदगियों को देखकर हम अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। हालांकि ये एक ऐसा फरेब है जिसमें सिर्फ खूबसूरत लम्हात दिखाए जाते हैं, किसी की पिक, किसी की 2 मिनट की रील, उसमें आप तयन नहीं कर सकते कि सामने वाला बहुत खुश है, पुरसुकून है। तो इस झंझट में पड़ने ही की जरूरत नहीं है।
9: सही बात है।
8: हकीकत देखिए यही है कि जो आपके पास है, जो आपको अल्लाह ने दिया है, उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सादा तर्ज जिंदगी अपनाने वाला फर्द जो होता है उस हकीकत को वो समझता है कि उसकी जिंदगियों का जो मयार है या

0: परखने की कोशिश नहीं करता है,
1: सही,
0: वो
1: सही.
0: नहीं देखता है कि सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं है, वो ये देखता है कि मेरे पास क्या है, मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकता हूँ.
1: सकीना जी आपने बजा फरमाया, सादगी हमें कनाअत और शुक्रगुजारी का दर्ज देती है.
0: बिल्कुल,
1: जब हम अपने पास मौजूद नेमतों को महसूस करते हैं और इन पर शुक्र अदा करते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है.
0: वाह क्या बात है.
1: इसके बरक्स जो शख्स हर वक्त मजीद हासिल करने की ख्वाहिश में मुब्तला रहता है वो कभी मुतमन नहीं हो सकता.
0: बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही. देखिए सादगी हमें ये सिखाती है कि कम में भी खुश रहा जा सकता है, और यही सोच इंसान को हकीकी खुशी के करीब ले जाता है. और देखिए जब हम अपनी खुशियों में खुश रहते हैं, अपने में खुश रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं, कम में तभी खुश रहा जा सकता है जब आपके घर में सुकून हो,
1: सही बात है,
0: खुशी
1: सही
0: हो
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और एक दूसरे का दर्द समझने वाले हो. ये ले तत्ते गरस मज कशर पुछना वना दंद वजन आयसे, फिर आप होने में भी खुश नहीं होंगे. ताकि अगर बरकत कितना भी हो वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते. यही आखिर में कहना चाहेंगे कि भागती दौड़ती जिंदगी में सादगी इख्तियार करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है. ये न सिर्फ हमें जहनी सुकून फराहम करती है बल्कि हमें एक बा मकसद और मुतवाजन जिंदगी गुजारने का हुनर भी सिखाती है. अगर हम वाकई खुशी और इत्मीनान चाहते हैं तो हमें अपनी तरजीहात अपनी प्रायोरिटीज को असर नौ तरतीब देना होगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और सादगी को हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि असल कामयाबी इसी में है कि हम कम में ज्यादा खुशी
0: महसूस करें.
1: जी जी बिल्कुल. और अपनी जिंदगी को बोझ के बजाय एक खूबसूरत नियमत समझकर गुजारें.
0: देखिए ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप में खुश रहना सीखें. ये सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, अक्सर हमें लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है, उसकी पिक देख के उसकी रील देख के, चाहे वो जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट से, उससे बाहर आके,
1: लेकिन असल में होता नहीं है,
0: होता नहीं है. एंटरटेनमेंट से बाहर आके और रियल फैमिली लाइफ कुछ और होती है, दिन भर के कुछ मामूलात कुछ और, डे टू डे लाइफ में होते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए. फिलहाल एक कश्मीरी गीत सुन लीजिए.

0: जी, जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और शो आप एंजॉय कर रहे हैं लाइव शो। जी हाँ, लाइव शो पयाम सुबह अपनी मेजबान सकीना और
1: महराज के साथ।
0: अब थोड़ी सी बात महराज हम बच्चों की करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अब चूंकि छुट्टियां हो चुकी हैं,
1: बिल्कुल,
0: आज संडे का दिन है, वैसे भी छुट्टी है और कल से माशाल्लाह वो अब ननिहाल जाएंगे, माता मालुक ट्रिप गो स्टार्ट।
1: और गर्मी का जोर भी,
0: गर्मी का जोर भी है, अब बर्दाश्त करने की भी अशद जरूरत है, बर्दाश्त ही कीजिए। लेकिन जिन बातों की तरफ हम इस वक्त अटेंशन मबजूल कराना चाहेंगे, क्योंकि छुट्टियां जो होती है उनमें कुछ अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज हम बच्चों के साथ करें वो बेहतर
1: रह सकता है।
0: और बच्चों को माहौल से मोहब्बत सिखाना
1: सही
0: वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक साफ और सरसब्ज दुनिया में बड़े हों, तो हमें उन्हें माहौल दोस्त आदत अपनाने की तरगीब देनी होगी।
1: बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां कुदरत के करीब जाने और नई मस्बत आदत अपनाने का बेहतरीन वक्त है।
0: बिल्कुल, और आज कुछ पॉइंट्स हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे या कुछ बातें ऐसी शेयर करेंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों में इनकल्केट कर सकते हैं जब हम नेचर के सिखा सकते हैं। देखिए, पहली बात हमने कहा कि वन महोत्सव है, हम जंगलों की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात हमने की आगाज में। देखिए, बच्चों को सिखाए प्लास्टिक के बजाय माहौल दोस्त का जो अशिया है उनका इस्तेमाल करना, उनको सिखाए कि प्लास्टिक के कम इस्तेमाल की अहमियत क्या है, क्यों है, और उन्हें कपड़े के थैले और दोबारा काबिल तजदीद जो चीज़ें हैं जैसे कि बोतलें वगैरह है, उनकी जो आदत है प्लास्टिक की बोतलें हैं वो क्यों कम करनी चाहिए, ये बच्चों को समझाएं क्या फर्क पड़ता
1: है, ये माहौल के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, एक और जो आदत पेरेंट बच्चों को सिखा सकते हैं वो है कि रिसाइकलिंग का शोर पैदा करें, बच्चों को समझाएं कि पुरानी चीज़ों को दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पुरानी किताबें, खिलौने या कपड़े।
0: वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और बिजली पानी, विंकेनस गर्मी मस कूता इस करा कोशिश की ये बिजली ती गज बचिन तो पानी ती गज ऐसे मयसर रोज। तो बच्चों को सिखाए कि दिन में लाइट ऑफ कर सकते हैं।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 MHz पर। सुबह के 7:55 हुए हैं। समिन, आइए आपको तफसील बताते हैं अब के बाद आज हमारे यहाँ से नश्र होने वाले बकिया प्रोग्रामों की। रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश होगा डिस्कशन टाइम। इसमें जिस मौजू पर बहस होगी वो है साहित्य एकेडमी और कश्मीरी जबान। शुरका हैं प्रोफेसर सतिंदर सिंह नूर, मिस्टर ए कृष्ण मूर्ति, श्रीमती रेनू भान और डॉक्टर अजीज हाजनी। प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं रफीक राज। शब 10:00 फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश होगा आपकी फरमाइश। प्रोग्राम पेश करेंगे जावेद अंद्राबी। सुबह 8:15 पर सीन तारीख प्रोग्राम पेश होगा। इसमें डॉक्टर मुमताज यतो और डॉक्टर सतीश विमल के दरमियान गुफ्तगु होगी। मौजू है आर्को एस्ट्रोनॉमिकल पास्ट ऑफ कश्मीर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबाहें नश्र होगा सुबह 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9:00। सुबह 9:45 पर आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनेंगे जेके बैंक डायरी। एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रेडियो साथी ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 10:00। बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम होनहार सुनेंगे सुबह 10:30 पर। समिनाज मारूफ सूफी शायर न्यामत सब की बरसी है। इस मौके पर सुबह 11:00 खसूसी प्रोग्राम गाश तारुक में इन्हीं की जिंदगी और कलाम से मुतलिक बात होगी। तहरीर मोहम्मद यूसुफ टेंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।

0: इथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को

0: मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के

0: अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी श्रीनगर 8:15 सपदे समिन पेश प्रोग्राम सैन तारीख।
2: سن تاریخ پروگراموں کے بیاکھ اک شمار ہے چس بہ ستیش ممل تہ خدمت مز حاضر
3: سمین وچھو کہ پتہ کال چھا

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी कुंटल कर दिया है, ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
1: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनाद में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमी कंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को मजबूत करेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
1: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीफ

0: का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
0: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की महबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेशगी तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा ज़खीरा काफ़ी है और इस वक्त ज़खीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्कगीर सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपये फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तरब करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इस्लाहात भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे, उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था।
0: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: आकाशवाणी खबरों का शोभा अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत आज शजरकारी और माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे देवेंद्र सूरा से की गई बातचीत नशर की जाएगी।
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये बातचीत आज सुबह 10:30 1:15 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजवजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इकतसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मजबूत इकतसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और उमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ओमान के दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्क दर्जे हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुए को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 17वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दुरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस, कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई सारो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 2 1

0: बात वो समझाना चाहता हूँ कि हर एक वजूद
1: जी
0: जो कायनात में है और जो जिंदा है, जो बेदार है, वो आलमी बेदारी के साथ कनेक्टेड है। तो आलमी बेदारी में जो गुण है वो गुण इस बेदार चीज यानी बेदार जर्रा एक इंसान में भी हो सकते हैं। तो यहाँ कहने का मकसद क्या है कि जो जिस्म है
1: जी,
0: जो दिमाग में आपने माहौल बना दिया, तो जिस्म का माहौल वही है। यानी मैंने अगर दिमाग में आपके खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत बनाई,
1: बिल्कुल,
0: तो जिस्म भी वैसा ही रिएक्ट करेगा।
1: करेगा।
0: हमारा एक कॉमन दोस्त है और आप उसको पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने उसके साथ जो है बातें की और मैंने आपका मूड देखा खराब हो रहा है, तो मैंने भी कतर ताल्लुक का इजहार किया। तो जाहिर सी बात है ये एक जो सोच थी आपकी, फिक्र जो थी, वो मेरे अंदर ट्रांसमिट हो गई और यहां से उसकी रिएक्शंस भी सामने आ गए। दूसरी बात ये है कि अगर हम जेनेटिकल डिजीजेस की बात करेंगे, यानी उनका तो कोई इलाज तस्वर भी नहीं है पूरी दुनिया में। हम लोग कहते हैं कि अगर सिर्फ एक इंसान माइंड चेंज करे अपना, यानी दिमाग की जहनियत चेंज करे, यानी एक आदमी है उनके खानदान में कैंसर होता है, आखिरी वक्त में मर जाते हैं, वो बेचारा पहले से ही इस शक शुभा में होता है कि कहीं खुदा न खास्ता मुझे भी कैंसर न हो जाए, तो इस सूरत में वो कई डॉक्टरों से चेकअप के बहाने, उस बहाने, इस बहाने और ये रौदात बताता है। और अगर डॉक्टर उनको कहे कि अच्छा, तो ये अच्छा से इसके जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपने जहन में ये बना लिया कि मेरे वालिद को अल्लाह बचाए कैंसर हुआ था, या मेरी मम्मी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे भी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। अगर आपने ये सोचा नहीं उन्हें हुआ था इस तरह की प्रॉब्लम, मुझे नहीं होगी, और इस नहीं होगी, आप एक प्रोसेस बनेगी आपके माइंड में। और अगर आपके अंदर जीन मौजूद है भी कैंसर का या हार्ट अटैक का, आप मेरी बात समझ, आप उसको माहौल नहीं देते हैं फेवरेबल। माहौल क्या है? वही माइंड जिसमें आपने ये बता दिया कि ये होगा या ये नहीं होगा। अगर आप ये कहा कि नहीं हो सकता है, मुझे नहीं होगा, चाहे सारा आपका पागलपन इसके पीछे हो कि नहीं जी नहीं होगा, कोई साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो नहीं हो सकता है, जीन एक्टिवेट नहीं होगा। इसको आजकल की दुनिया में हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। और फिर अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप ये कहेंगे कि यार मुझे ठीक होना है। यानी डॉक्यूमेंटेड है कि बहुत सारे मरीज जो कैंसर के आखिरी स्टेज में भी थे, और उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि हम ठीक हो जाएंगे,
1: तो वो ठीक हो गए,
0: तो ठीक हो गए। एड्स से इस तरह के बहुत सारे हमारे पास, या इनक्यूरेबल डिजीजेस के कई मिसालें हैं पूरी दुनिया में, कि भाई वो फिर ठीक हो गए, रिवर्स हो गए, जो रिवर्स नहीं होने चाहिए। वजह क्या है कि एक आदमी ने मान लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा,
1: पॉजिटिव सोच
0: बना दी। तो इसको हम आजकल की दुनिया में प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट डेफिनेटली काम करता है, और ये काम जो है किसी पीर से भी हो सकता है, अगर उसके पास वो पावर अच्छी हो जिस पावर से वो दूसरे को कन्विंस करे और दूसरा फिर वैसा ही सोचे जैसे किसी फकीर के पास, किसी दरवेश के पास, इवन उस आदमी के पास भी जो बिल्कुल जो है गैर शरी तरीके भी इख्तियार करता हूँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हर एक इंसान का उसका पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, और नेगेटिव एटीट्यूड किसी भी इंसान का नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि हमें जो समझना है वो ये समझना है कि अल्लाह ने आग बनाई। अब अल्लाह किसको कहेंगे जिसकी न कोई शक्ल है न कोई सूरत है, और वो एक एनर्जी है
1: जी।
0: जिस एनर्जी ने, जिस ताकत ने इस पूरी कायनात को, इस पूरे निजाम को बना लिया।
1: बिल्कुल।
0: तो यही एनर्जी, वो रूह जिसको हम कहेंगे, या हमारे जिस्म में, यानी वो अमर, वो ताकत, या उस एनर्जी से किसी एनर्जी को ट्रांसमिट किया इस मुजस्मे में, यानी जैसे हम कहते हैं कि आदम को जब बना दिया गया तो उसके बाद उसको रूह फूंक दी गई। रूह फूंकने के बाद पहले छींक आ गए, तो मलाइकों को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हुआ, है ना?
1: जी जी।
0: है ना? तब तक तो वो तमाशा देखने आए थे कि ये बनाया क्या है, जन्नत के दरवाजे पे खड़े थे। तो इसी तरह से जो मैं बात कह रहा हूँ कि आंख है, दिल है, दिमाग है, हर एक जिस्म की खुलिया या सेल है, वो सेल फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द क्रिएटर।
1: अच्छा,
0: अब सुनिए मेरी बात। अगर मेरी आंख अब वो चीजें देखने लगे जो इस क्रिएटर

0: या इस कायनात या इस आग बनाने वाले के खिलाफ जो है, या उसने उनको मना किया था, तो क्या ये आग के सेल्स नहीं जानते हैं? क्या वो मेरा साथ देंगे? मैं कौन हूँ? वो एहसास जिसको इस जिस्म की जिम्मेदारी दी गई, इस जिस्म को इख्तियार दिया गया। तो अगर मैं इस जिस्म को एक ऐसे रास्ते पे लेता हूँ जिस रास्ते पे मेरी सेल्स, मेरे टिश्यूज, मेरे ऑर्गन्स प्रोग्राम नहीं किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ एक झगड़ा हो सकता है नेचुरल फोर्सेस के दरमियान और उस एहसास के दरमियान जिस एहसास से मैं इन पर एक स्ट्रेन या सिट्रस डालता हूँ। तो इस तरह से अगर इन जैसे नज़ारों के देखने के बाद जिन पे मना किया गया, जिनकी प्रोग्रामिंग नहीं की गई, आप मेरी बात समझ लीजिएगा, इस पर फिक्र करने की जरूरत है। अगर फिर आंख में रोशनी कम हो जाए तो उसमें मेरी आंखों की खता नहीं है। खता किस चीज की है? उस कुवत की जो जबरदस्ती मैं इन अज़ाओं को वो काम कराना चाहता हूँ जिसके लिए प्रोग्राम नहीं किए गए। तो इस तरह से नेचर को समझना बहुत जरूरी है। नेचर क्या है? नेचर ये है कि आपका जिस्म, आपके ऑर्गन्स एक मुकर्रर वक्त से एक मुकर्रर वक्त तक काम करते हैं, और ये वक्त भी हमने तय नहीं किया है इंसानों ने, ये तय भी उन्हीं फोर्सेस ने किया जिन फोर्सेस की वजह से ये पूरी कायनात चल रही है। वो शायर के बकोल कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका कि बात अब तक बनी हुई है। देखिए एक चीज समझने की जरूरत है, वो ये है कि हमने कई मरीज ऐसे देखे जो दहाइयों से 20 साल 30 साल से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मौत नहीं आती। और कई सेहतमंद लोग ऐसे देखे जो खेल के मैदान में खेलते खेलते मर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जिंदगी को समझने की जरूरत है, वैसे ही जैसे वो हमारे सामने आती है। और हमारे सामने क्या है? वो है कुदरत का नेचर, कुदरती उसूल। ये कुदरत के उसूल ही तो है सारे कि जिसकी वजह से हमारी जिंदगी आज तक कायम है। हजारों साल से जिंदगी चल रही है, और हजारों साल से जिंदगी को जो चाहिए वो सारी गजाएं, वो सारी जड़ी बूटियां, वो सारी दवाएं, वो इसी जमीन पे मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है इस सूरत में हम अननेचुरल चीजों की तरफ क्यों जाए? जो अननेचुरल चीजें हमारे जिस्म में डिस्टर्बेंस पैदा करके दूसरे डिजीज़ को जन्म देती हैं। तो हमारा मानना है कि भाई अगर सेहत चाहिए तो कुदरत और कुदरती तरीके इलाज की तरफ लौट आए, इसी में सेहत है, इसी में भलाई है। और हम यूनानी वाले भी इसी कुदरती इलाज या इसी फितरती इलाज की वकालत करते हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त, अजीज, रिश्तेदार किसी भी मर्ज में मुब्तला है तो हमारे किसी भी सेंटर पे आइए, हमसे मशवरा कर लीजिए। नाग में लाल चौक पे हमारा एक हॉस्पिटल है यूनानी पंचकर्मा के नाम से, तराल खान का फैज बना अहाते में ये सेंटर है। तो वहाँ डॉक्टर माजिद साहब होते हैं फ्राइडेज को, मैं अनंतनाग में संडेज को होता हूँ। इसी तरह से एक और सेंटर हमारे शुपियन में कोर्ट रोड में, वहाँ डॉक्टर अब्बास साहब होते हैं, माजिद साहब ट्यूजडेज को होते हैं। मैं बजाय खुद यहाँ श्रीनगर के दो सेंटर्स हैं, एक सेंटर जो नटीपुरा वाला सेंटर है बर्षा नगर में, वहाँ पर मैं बजाय खुद वेनसडेज को होता हूँ। इसी तरह से एक और सेंटर है हमारा सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, वहाँ मैं ट्यूजडेज और सैटरडेज को होता हूँ। और एक और सेंटर हमारा मागाम में, जहाँ डॉक्टर जान साहब बैठते हैं बाईसहर सेंटर बिल्कुल सामने, एक और सेंटर है हमारा नॉर्थ में बारामूला में उर्दू बाजार में। तो वहाँ पर जो है डॉक्टर जासिया जी होती हैं, फारूक साहब होते हैं वहाँ पर, डॉक्टर अर्शद साहब होते हैं। तो ये टीम वर्क की वजह से हम लोग आज तक कामयाब है, और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी कामयाब रहे। हमारा एक नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर, उस पे बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, 9419408011।
1: शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी खूबसूरत बातें हमारे सामने तक पहुँचाई। इस वक्त घड़ी इशारा कर रही है प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे और ढेर सारी बातें आपसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। خاموشی قدرت کی زباں ہے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے
2: ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز، لال چوک اننت ناگ، کوٹ روڈ شپیاں، خانقاہ فیض بنا ترال، سکڈافر چوک، عیدگاہ سری نگر، اردو بازار بارہ ملہ، ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری، ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر، اقبال کالونی، برشا نگر، نٹی پورا، سری نگر.

0: कर सेल नंबर 9419408011।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं। समीन लाइव मॉर्निंग शो पर सुबह जारी हैं। ये वक्त तो चला है मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां सुनने का।
2: आज की सुर्खियां।
3: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: समय आज इतवार है। साल 2026 के जुलाई महीने की 5 तारीख मुताबिक 19 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी। श्रीनगर से आज शाया होने वाले उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मेराजुद्दीन और मेरे साथ है
4: जी दोस्तों, मैं हूं सकीना और कंट्रोल रूम में हमारे साथी हैं नसीर अहमद, इरशाद अहमद नायकू और अल्ताफ अहमद।
1: समीन आगाज करते हैं आज के अखबार में शामिल अहम खबरों की सुर्खियों से।
4: पहली खबर जो उर्दू रोजनामे से है, सुर्खी है, ये भी आपसे बता दूं। LG की सिर्फ दुरुस्त रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रा करने की अपील। शेड्यूल पर सख्ती से अमल करना तमाम यात्रियों की सलामती, तहफ्फुज और सहूलत के लिए नागुजीर।
1: बिल्कुल, इसी हवाले से एक सुर्खी है
4: जी।
1: सालाना अमरनाथ यात्रा 2026 कामयाबी और पुरअमन माहौल में जारी। पहले 2 दिनों में 26,000 से जायद यात्रियों ने गुफा का दर्शन किया।
4: और ये बात भी आपके साथ शेयर करें, ये उर्दू रोजनामे की शेयर सुर्खी है कि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक पार्लियामेंट के सेशन का ऐलान कर दिया गया है।
1: बिल्कुल, पुलिस सरबराह ने अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी जायजा इजलास मुनक्द किया। नलिन प्रभात ने अफसरान को पेशावराना रवैया और अवाम दोस्त खदमत पर जोर दिया।
4: एक उर्दू रोजनामे की शेसुर्खी है कि सईदपुरा शुपया में तलाशी के दौरान गोलियों के चलने की सदाएं। वाकये के बाद इलाके में इजाफी नफरी रवाना कर दी गई, घेराव तंग।
1: मौसम के हवाले से छपी ये सुर्खी है
4: जी।
1: जम्मू कश्मीर में आइंदा हफ्ते शदीद बारिशों का इम्कान। 6 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, गरज चमक और आंधी की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों का खदशा, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरतेहाल का इंतबाह।
4: श्रीनगर एयरपोर्ट की रनवे की बंदिश मुआखर करने पर वजीर आला का इजहार इत्मीनान। मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फैसले से तिजारत और सियाहत को तहफ्फुज मिलेगा।
1: जम्मू कश्मीर असेंबली का आइंदा इजलास सितंबर के अवाखिर में 4 अक्टूबर से कबल मुतवक्के। असेंबली को डिजिटल बनाने की तैयारियां तेज। अराकीन को टैबलेट्स फराहम करने का फैसला। मेंबरान असेंबली सवालात, करारदादों और बिलों की पेशरफ्त ऑनलाइन देख सकेंगे।
4: भारत की दिफाई पैदावार में गैर मामूली इजाफा हुआ है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मुल्क में तैयार किए जाने वाले दिफाई साजो सामान पर एतमाद बढ़ गया है।
1: डिविजनल कमिश्नर ने एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी इजलास की सदारत की। इमरजेंसी रोड, वेस्ट मैनेजमेंट और फजाई सलामती पर जोर।
4: वजीर आजम का स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर उन्हें खराज अकीदत। मुल्क भर के करोड़ों नौजवानों के लिए एक रहनुमा कुवत बने।
1: समय सुर्खियां आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं।
5: دوبے ہسا اگر گاڑی سکوٹر چھنا انا یور چھ گسان تو اور چھ انا مگر میں ہسا تورن فکر یمن ایگریکلچر چیزن کیا سکیم
6: بوسا وا ایگریکلچر شاخ الگ لون سکیم اس ات چھ لگان انٹرسٹ واری ات گچ اسن کسان کریڈٹ کارڈ ات پرفارما بل نیمو کنت بینکس پر 50% ڈاؤن پیمنٹ رٹن باقی رقم چھ فائنانس گسان تہ سبسڈی واتن چھ ات اکاؤنٹس من واپس
5: گونا فائنانس تہ چھ گسان تہ سبسڈی تہ چھ واتن
6: ا ہونڈا دوا موٹر اب موٹر ٹلر وغیرہ ان بابت ہی صرف اخ نام یا JK स्टेशनर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
7: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान।

0: रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: जय बाबा बसवानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
2: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
1: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
2: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूडिंग पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: दोपहर हसा दुनिया ते जहान द्राव कर तब तो छोने नंदर तभी फुर्सत मिला।
4: ए क्या सा कर दुकान हसा चुम बा कर रहे थे कर क्या
3: वो क्वेश्चन बैठता आन ते दिया जो पैसेंजर इलेक्ट्रिक और हाथ प्लस माइलेज दिवा एक्सी चार्जर्स दम दर्द शुभदार।
4: हाय खुदा विंकेनस कचान यूथ बोर्ड रकम
3: तन खतरा हसा को बैंक एक्सपर्ट गा जीरो डाउन पेमेंट पे आराम ते गसी कस्त ते बरक पता आराम सा विंकेन हसा छो टूरिस्ट सीजन ते टूरिस्ट तन ते छो आत्मत आराम गा।
4: आ मजी तफसीलात खतर करियो रिप्त कयम कश्मीर मोटर्स
5: वक्फे के बाद आज की सुर्खियों में आपका फिर से खैर मकदम है। जी सकीना,
6: मुतनाज़िया किताबों पर महकमे स्कूल एजुकेशन के 8 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक कंप्यूटर असिस्टेंट को बरतरफ करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया।
5: जी एक और दो रोजनामे की सुर्खी है
6: जी।
5: राजौरी और किश्तवाड़ में दो अलमनाक सड़क हादसात रोनमा, बाप बेटा और भाई बहन समेत 4 अफराद अजान, 4 दीगर जख्मी।
6: आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं, यूनिक आईडी नोटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार होल्डर्स के लिए नहीं नई आधार ऐप के जरिए ईमेल आईडी को मुफ्त में शामिल या अपडेट करने की सहूलत फराहम कर दी है
5: जी। लसजन में कोहराम, जहलिम में नहाते हुए 13 साल लड़का गर्क आब, दाशीगाम नाले में नौजवान की गर्काबी का मामला, हिफाजती बाढ़ और इंतबाही बोर्ड नस्ब करने का मुतालबा।
6: लेकिन ये अफसोसनाक खबरें हमें आए दिन सुनने को मिलती है। कुछ सुर्खियां अभी और भी है लेकिन इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। हमने आज के शो में बात की थी, बच्चों की बात हमने की तो हमने ये कहा था कि अफसोस लोग हर साल ऐसे वाकयात देखते और सुनते हैं लेकिन फिर भी इबरत नहीं पकड़ते हैं,
5: खासकर इन छुट्टियों में।
6: इन छुट्टियों के दिनों में देखिये पानी की ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। अब देखिये साइकिल चलाना किसी को आती नहीं है तो कैसे साइकिल चलाएगा, ड्राइविंग किसी को आती नहीं है तो कैसे हम ड्राइव करेंगे। इसे कहीं बाकी जो फील्ड्स है जब महारत आपको उस चीज में आएगी तो आप कर सकते हैं, वैसे ही जब आपको स्विमिंग नहीं आती है तो पानी में छलांग मारने की क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पे जरूरत है, अब छुट्टियों के आयाम चल रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे तो ननिहाल में रहेंगे छोटे छोटे या घर में रहेंगे, उनको संभालने वाले लोग हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 5th क्लास से आगे आगे उनको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पेरेंट्स को देखने की जरूरत है। जो वाकयात पेश आ रहे हैं पानी में डूबने के, वजह यही है कि स्विमिंग नहीं आती है। तो स्विमिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूरत है कि बच्चों को आप पहले स्विमिंग में ट्रेन कीजिए, फिर अगर वो पानी में भी जाए तो कोई
5: खतरा
6: नहीं। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा है कि जाए बच्चे स्विमिंग तक करना, अब वो उसमें माहिर जब बन जाएगा, अब देखिए लज्जन का प्रोफेशनल बन जाते हैं। ये जो लज्जन का वाक्य है या हारवन का वाक्य है वो क्रिटिकल है हारवन का बच्चा, और जो लज्जन का बच्चा है वो अपनी जान खो बैठा। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और स्विमिंग न आना स्टार्ट नहीं तो पत का चाव स्पोर्ट लाइन।
5: सकीना जी आज से आसान गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड,
6: बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही है और इस पे बात करना जरूरी है और इसमें थोड़ा मोहतात रहने की कोशिश कीजिए। छुट्टियों के आयाम चल रहे हैं, दोस्त बिरादरी में बच्चे इधर उधर जाते हैं पानी में नहाने के लिए, बहाना ये है कि गर्मी है, गर्मी पहले भी हुआ करती थी, तो जरा तहम्मुल से आप बैठे घर में अपनी फैमिली के साथ रिश्तेदारों के यहाँ जाने की कोशिश कीजिए। हम बहुत शिकायत करते हैं ना कि रिश्ते अब टूट रहे हैं, वजह यही है कि हमारी जो अटेंशन है या तो वो सोशल मीडिया की तरफ है, अब गर्मी है तो या पानी में हम कूद देते हैं, और फिर ये होता है कि हमें हमजा भाई को बुलाना पड़ता है रेस्क्यू के लिए, NDRF SDRF है, लेकिन जो माहिर

0: है स्विमिंग में, तो वो कोशिश करे जानने की अगर वो स्विमिंग जानता है।
1: बिल्कुल, अब मजीद सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं।
2: बिल्कुल,
1: हाजिन में मनुष्यात स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब, बड़ी मकदार में चरस बरामद, चार गिरफ्तार।
0: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि लद्दाख के लिए बाइख्तियार मुंतखब इदारा कायम करने पर उसूली इत्तफाक, आर्टिकल 371 के तहत आईनी तहफ्फुज़ात पर भी पेशरफ्त।
1: हिंदुस्तान तवानाई के बहरान से निकलने में कामयाब, नरेंद्र मोदी। मगरबी एशिया में जंग ने बड़े बड़े ममालिक को ईंधन की किल्लत से दोचार किया।
0: प्रदेश कांग्रेस लीडर तारिक हमीद कर्रा का वजीर आलम के नाम मकतूब, एमएलए निजामुद्दीन भट्ट के साथ मुबैना बदसलूकी की तहकीकात के किया मुतालबा।
1: शदीद गर्मी के लहर से अमरीका बेहाल, 250वें योम आजादी के कई प्रोग्राम मंसूख।
0: अब कुछ खेल खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, तो ये खबर पहले महराज आपके हाथ में है, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से वो शेयर कीजिए।
1: मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में हराकर नई तारीख रकम की। अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप में दिफा की उम्मीदें बरकरार, कैप वर्डी को शिकस्त दी।
0: कौमी आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में कार्तिकी पुरी की शानदार कारकर्दगी।
1: बिल्कुल, एनआईटी श्रीनगर में ऑल इंडिया इंटर एनआईटी फैकल्टी मुस्ताफ क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज।
0: और ये खेल सफे से खबर है, आलमी कप एशियाई खेलों से पहले अपनी फॉर्म पर लौटी हिंदुस्तानी हॉकी टीम।
1: तो समीन ये थी मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
3: पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: करने वाले मुसाफिरों को राहत मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम, ताजरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये मामला जाती तौर पर मरकज के साथ उठाया था। उन्होंने कहा कि सियाहती सीजन के दौरान हवाई रबते को बरकरार रहना जम्मू कश्मीर की मीशत के लिए अहमियत का हामिल है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुसन खूबी जारी है और आज भी बालतल और ननवन के बुनियादी कैंपों से कई हजार यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया। उधर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज अलल सुबह 6721 यात्रियों के एक और काफिले को आज वादी की तरफ रवाना किया गया। यात्रा के रास्तों पर श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए सलामती समेत तमाम तर इंतजाम दस्तियाब कराए गए हैं। इस बारे में कई यात्रियों का कहना है,
1: हम महाराष्ट्र से आए, आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था मिली, हमको सवेरे जाना है और हम यात्री के लिए यहाँ पर जो सुविधा मिली बहुत अच्छी मिली। खाना पीना की व्यवस्था बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो सेवेकरी है वो बहुत अच्छे लगे, बड़े प्यार से हमसे आए और हम 6 यात्री है और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा है और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर।
2: मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली साथ। बालटाल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी, जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आपके सुविधा के कारण ही बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
0: आज सुबह 8 बजे तक मजीद 1978 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। जैसे कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कल शाम तक पवित्र गुफा में हाजिरी देने वाले यात्रियों की तादाद 32,000 से तजावुज कर गई है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की कुलहुम निजामत और जमीनी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। LG ने कहा कि इस साल यात्रा ट्रैक्स पर यात्रियों की तादाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल किया जा रहा है, लिहाजा यात्रियों की सलामती और सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल पर अमल करना लाजमी है। LG ने तमाम महकमों और सलामती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वह सभी मुतल्लिकीन बशमूल लंगर तंजीमों, खिदमत फराहम कुनंदगान और दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करें। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को यात्रियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए सभी अहम अकामात, खासतौर पर कौमी शाहरा, यात्रा के रूटों और दूसरी जरूरी राहदारियों पर निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। वो पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में इस निस्बत से जरूरी सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे थे। मीटिंग में IGP कश्मीर और IGP जम्मू समेत दीगर सभी सीनियर पुलिस अहदेदारों और अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने यात्रियों की महफूज आवाजाही को यकीनी बनाने के सिलसिले में वजह करदा मियारी जवाबित के बारे में DGP को जरूरी जानकारी फराहम की। नाज़िम ज़िराअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर किसानों के दौरे उनकी सलाहियत साजी के लिए अहमियत के हामिल होते हैं, जो उन्हें नित नई ज़रई तकनीकों, इख्तराई काश्तकारी और देरपा ज़िराअत के कामयाब नमूनों से रोशनास कराते हैं। वो श्रीनगर में महकमे ज़िराअत के सदर दफ्तर पर किसानों के 5 रोज़ा जानकारी दौरे के इख्तिताम पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरे के तहत इन किसानों को मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी सतह पर अमलाए जा रहे नए तौर तरीकों के बारे में बराहे रास्त जानकारी दी गई। NIT श्रीनगर के मेज़बानी में कल शुरू हुआ कुल हिंद बैन NIT क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में NIT श्रीनगर की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए NIT मणिपुर को 10 विकेट से हरा दिया। कौमी सतह के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 24 टीमें शिरकत कर रही हैं, जो कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के NIT से ताल्लुक रखती हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.8 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
3: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
4: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिमा।
5: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
6: सब्र रोशिद सुलुम।
5: सुनते रहिए हमारी नशरियात
3: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
7: Yeah.
5: लाइव

0: 5 जुलाई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
1: यार जल्दी से 500 रुपए ऑनलाइन भेज दे, अर्जेंट है।
2: यार मेरा डेटा पैक खत्म है, रुक मैं पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करके ऑनलाइन पे कर देता हूँ।
3: खबरदार, पब्लिक वाईफाई पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स, बैंक अकाउंट लॉगिन, पासवर्ड्स बिल्कुल शेयर न करें और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचें। जानकारी ही समझदारी है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक।
4: प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत करेंगे इदारे से।
0: 3 ट्रिलियन यानी

0: 3 लाख करोड़, यानी 3 के दाएं तरफ 12 जीरो। ये वो बिजनेस माइलस्टोन है जो आपके और हमारे, हम सबके चहेते इदारे जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता दिनों अबूर कर लिया। ये एक तारीखी लम्हा ज़रूर है, लेकिन हमारी मंजिल नहीं, क्योंकि आपके साथ विश्वास और भरोसे से बना ये इदारा तरक्की की हर नई ऊंचाई को छूने का साहस रखता है, जो इसकी उकाबी शान के ऐन मुताबिक है। 30 जून 2026 को जेके बैंक ने जो कारोबारी आदाद व शुमार स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर किए, उनके मुताबिक हमारा मजमूई कारोबार लगभग 3,04,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। 1938 में महाराजा हरि सिंह ने 5 लाख रुपए के इनिशियल कैपिटल से जिस बैंक की शुरुआत की थी, उसने साल 2013 में 75 साल के बाद 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस दर्ज किया। साल 2023 में लगभग 10 बरस के बाद 2 लाख करोड़ और 2026 में महज मजीद 3 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का मजमूई कारोबारी हदफ अबूर किया। तरक्की की ये रफ्तार देखकर 5 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस टारगेट का ताकुब काबिले हुसूल नजर आता है, जिसमें आपका साथ कलीदी हैसियत रखता है। बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्कदा एक पुरवकार तकरीब में इस तारीखी कामयाबी को सेलिब्रेट किया गया, जहां बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने तमाम खाताधारान, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबादियां पेश की, जिस दौरान बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, चीफ जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स भी शामिल थे, जबकि डिविजनल हेड्स और जोनल हेड्स ने बजरिए वीडियो लिंक प्रोग्राम में शिरकत की। MD और CEO ने तमाम मौजूदा और साबिका एम्प्लॉइज का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहनत शायका से बैंक की अजमत को 4 चांद लगे हैं। उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबारी हदफ अबूर करना हम सब के लिए फख्र की बात है, और ये कामयाबी हम सब की मुश्तरका कामयाबी है। ये कामयाबी यहाँ के लोगों की है, क्योंकि जूं जूं बैंक तरक्की करता जाएगा, यहाँ की मईशत और इक्तसादियात में गरां कदर इजाफे का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 4 साल में बैंक अपना मजमूई कारोबार 5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का इरादा रखता है, जिसके लिए हम सबको मुसम्मम इरादों के साथ आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। ये कामयाबी तब तक नामुकम्मल रहेगी जब तक कि ना इसका फल यहाँ के हर एक नागरिक तक पहुँचे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा आदाब में तवक्को से कम वक्त लगेगा और बैंक मुल्क की मालियाती उफक पर एक दरख्शंदा सितारे की मानिंद चमकेगा।
1: तवज्जो दें ऑनलाइन लोन फ्रॉड से बचें। फ्रॉडुलेंट लोन ऐप्स और फेक कॉल्स आपको अपनी मालूमात शेयर करने पर मजबूर कर सकती हैं। अपने आप को और अपने पैसे महफूज रखें, सिर्फ भरोसेमंद ऑथराइज्ड बैंक वेबसाइट्स या ऐप्स का इस्तेमाल करें।
2: याद रखें, जल्दी पैसे का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। पहले तस्दीक करें, फिर अप्लाई करें। महफूज रहिए, होशियार रहिए। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK बैंक, आपका अपना बैंक।
3: दोस्तों, गुज़श्ता दिनों इंटरनेशनल MSME डे को मनाने के हवाले से जेके बैंक ने मुल्कगीर तकरीबात का एहतमाम किया, जिसमें बैंक के तमाम 35 क्लस्टर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने इन तकरीबात का इनेकाद जेके बैंक ने मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों, व्यापार मंडलों और दीगर मुस्तनद इदारों के इश्तराक से किया था, जिनका मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से आगही फैलाने से था, ताकि नौजवानों को कारोबार के साथ जोड़ा जाए, जिससे उनको रोजगार मिले और मुल्क को कौम की तरक्की में वो अपना रोल अदा कर सकें। MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने इस मौके पर कहा कि नौजवान कौम का सरमाया होते हैं और उनके रोजगार में सरमायाकारी करना मुल्क की तरक्की की जमानत है। उन्होंने जोर दिया कि नौजवानों को हुकूमत की तरफ से जारी करदा मुख्तलिफ स्कीमों, जिनमें मिशन युवा, PM EGP, PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि, स्टैंड अप इंडिया जैसी बेहतरीन स्कीमें शामिल हैं, से इस्तेफादा करना चाहिए, ताकि उनके अंदर मौजूद सलाहियतों को बरोए कार लाया जा सके। उन्होंने इस बात का वादा किया कि जेके बैंक हमेशा ऐसी कोशिशों का हामी बनेगा जिनका मकसद नौजवानों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने से हो, और ये कि नौजवानों को आगे बढ़कर इन सहूलियात से फायदा उठाना चाहिए।

0: पर संजीदगी से गौर करके उन्हें अमलाया जाएगा। एमडीओ सीईओ ने कहा कि जेके बैंक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का अपना बैंक है और लद्दाख निवासियों का इस बैंक पर उतना ही हक है जितना कि जम्मू कश्मीर के लोगों का। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की जेके बैंक के साथ बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है और बैंक उनके जज्बात की कदर करते हुए उन्हें अपनाइयत के एहसास के साथ सर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों में बैंकिंग खदमात मयसर करा के बैंक अपना कर्तव्य निभा रहा है, जबकि दीगर इलाकों को भी बैंकिंग नेटवर्क के साथ जोड़ने का अमल भी जेर गौर है, जिस पर बैंक अनकरीब अमल दरामद करेगा।
1: अरे आप ये लाइन तोड़ के कहाँ जा रहे हैं?
2: अरे आने दीजिए, सीनियर सिटीजन है।
3: अब मेरे खाते से 350 रुपए निकाल दो।
1: 350 रुपए में क्या आता है?
3: शहर से मेरा नाती आ रहा है, उसके लिए रिमोट वाली कार आती है।
4: जे&के बैंक, जरूरत छोटी हो या बड़ी, हम आपकी जरूरतों की कद्र करते हैं। जे&के बैंक, आप लोगों का बैंक।
5: और अब इनामी सवाल की बारी।
6: दोस्तों, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपसे ECLGS का फुल फॉर्म पूछा था।
5: इस सवाल का सही जवाब है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।
6: मेल के जरिए हमें कई सारे जवाबात मौसूल हुए, जिनमें बेशतर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के तीन खुशनसीब विनर्स का नाम है कश्मीर डिवीजन से इस्लामिया कॉलेज हवल की इरफाना, जम्मू डिवीजन से पुगलपरिस्तान रामबन के सविंदर सिंह और लद्दाख से लेह की हुमैरा यासीन।
5: इनाम हासिल करने वाले तीनों दोस्तों को जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से बहुत बहुत बधाई।
7: ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखें, ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे। लाखों नौजवानों के ऐसे ही ख्वाब पूरे किए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने।
8: आज ही नजदीकी ब्रांच पर पहुंचें और दिल खोल के अपने छोटे बड़े बिजनेस आइडिया को डिस्कस करें, उन्हें सही राह जम्मू कश्मीर बैंक ही देगा।
7: जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आम लोगों का बैंक।
5: और अब आप नोट करें आज का सवाल।
6: 30 जून 2026 को जेके बैंक ने 3,00,000 करोड़ का मजमुई कारोबारी हदफ उबूर कर लिया। आपको बताना होगा कि जेके बैंक ने 2,00,000 करोड़ रुपए का बिजनेस माइलस्टोन किस साल में उबूर किया था। आपके जवाबात हमें 11 जुलाई शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल एड्रेस पर मौसूल हो जाने चाहिए। याद रहे कि ईमेल में अपना नाम, पता, फोन नंबर और जेके बैंक का 16 डिजिट वाला अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें।
5: हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com।
6: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर
5: 1800-890-2122
6: या लॉग ऑन करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.jkb.bank.in।
9: हेलो, क्या पर इतने जल्दी? हेलो,
10: क्या हुआ?
9: अबू की बीमारी के वक्त एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे, उसे पैसे आज के आज ही चाहिए, कैसे बंदोबस्त करो?
10: जम्मू एंड कश्मीर बैंक चल के गोल्ड ज्वेलरी पे गोल्ड लोन लेते हैं। आप आज के आज दोस्त को पैसे वापस करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर बैंक को चुकाते जाएं। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, हम जैसे आम लोगों का बैंक।
11: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जे&के बैंक।
12: आप समाप्त कर रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। सुबह के 10 बज चुके हैं, एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो साथी।
13: रेडियो साथी,
14: दिल से दिल, रोशनी और सच्चाई के सफर में
13: आपका हम सफर,
14: रेडियो साथी।
15: आदाब सामाई, प्रोग्राम रेडियो साथी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी।
16: और मैं हूं रिफत आरा। समीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की, खुशहाली और समाजी तब्दीली से जुड़ा हुआ है। हमारा मौजू है ख्वातीन की बढ़ती हुई

0: कश्मीर की इन अजीम शख्सियात में सबसे नुमाया नाम ललदित का है। ललदित कश्मीर की सूफी रवायत की एक दरख्शां अलामत है। उनके अफकार मोहब्बत, इंसानियत, रूहानियत और बाहमी एहतराम का दर्ज देते हैं। उनकी तालीमात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और ख्वातीन के लिए हौसले और खुदशनासी का सरचश्मा है।
1: इसी तरह कश्मीर की अजीम शायरा हबा खातून का नाम भी अदब और सकाफत की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। उनकी शायरी मोहब्बत, एहसास और इंसानी जज्बात की खूबसूरत तर्जमान है। हबा खातून ने अपनी तख्लीकी कुव्वत से ये साबित किया कि ख्वातीन हर दौर में माशरे की फिक्री और सकाफती तामीर में अहम किरदार अदा करती रही है।
0: ललदित और हबा खातून जैसी अजीम शख्सियात की विरासत आज की कश्मीरी ख्वातीन के हौसलों में झलकती है। वो अपनी रवायात से जुड़ी हुई भी हैं और जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग भी।
1: समीन, आज जब हम कश्मीर की ख्वातीन की कामयाबियों का जायजा लेते हैं तो हमें एक मस्बत और उम्मीद अफजा तस्वीर नजर आती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें तालीम याफ्ता बेटियां, कामयाब कारोबारी ख्वातीन, जिम्मेदार अफसरान, तख्लीकी फनकार और बासलाहियत घरेलू ख्वातीन से मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर कर रही है।
0: ख्वातीन की तरक्की दरअसल पूरे माशरे की तरक्की है। जब एक खातून तालीम हासिल करती है तो एक खानदान तालीम याफ्ता बनता है। जब एक

0: खातून माशी तौर पर खुद मुख्तार होती है तो पूरा घराना मजबूत होता है, और जब ख्वातीन क़यादत के मैदान में आगे बढ़ती हैं तो समाज में मजबूत तब्दीलियां जन्म लेती हैं।
1: ज़रूरत इस बात की है कि ख़वातीन को मज़ीद मौक़े फराहम किए जाएं, उनकी तालीम और हुनरमंदी को फ़रोग़ दिया जाए और उन्हें हर शोबे में अपनी सलाहियतों के इजहार का मुनासिब मौका दिया जाए ताकि वो मुल्क और कौम की तामीर में मज़ीद मौसर किरदार अदा कर सकें।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: रिफत, जब हम खवातीन की तरह

0: और खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो हमें देही इलाकों की उन बेशुमार खवातीन को भी याद रखना चाहिए जो खामोशी के साथ अपने खानदान और माशरे की तामीर में मसरूफ हैं। अगरचे उनकी कामयाबियां अक्सर खबरों की जीनत नहीं बनती, लेकिन उनकी मेहनत और आज़म किसी बड़े कारनामे से कम नहीं।
1: बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने रशीद। कश्मीर के दूर दराज इलाकों में खवातीन न सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां निभा रही हैं, बल्कि ज़राअत, बागवानी, डेयरी फार्मिंग और दस्तकारी जैसे शोबों में भी नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सेब, अखरोट, बादाम और जाफरान

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: सामे इकराम, खवातीन के बाख्तियार होने का मतलब सिर्फ माशी तरक्की नहीं बल्कि इज्जत नफ्स, खुद एतमादी और फैसला साजी में शिरकत भी है। जब ख्वातीन को बराबरी के मौके मैसर आते हैं तो पूरा माशरा तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन हो जाता है।
0: यकीनन आने वाला दौर ख्वातीन की मजीद कामयाबियों का दौर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर की बेटियां साइंस, टेक्नोलॉजी, तहकीक, इंतजामिया, सन्नत, अदब और खेल के मैदानों में नई तारीख रकम करेंगी।
2: और हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके ख्वाबों की ताबीर के लिए एक साजगार माहौल फराहम करें, इनकी हौसला अफजाई करें और इनकी कामयाबियों को कदर की निगाह से देखें।
0: ख्वातीन की कामयाबी दरअसल कौम की कामयाबी है और ख्वातीन की तरक्की मुल्क की तरक्की का सामिन है।
2: सामिन, कश्मीर

समय मात्रा आप समाप्त कर रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम रेडियो साथी। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव और FM 103.5 MHz पर।

एम वेव 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आवाज़ है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन के। समय सुबह के ठीक 10:30 हो रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे होनहार।

0: नहीं रहेगी। बाप ने कहा, अगर चोर नहीं बनोगे तो मेरे घर से निकल जाओ। बेटे ने कहा क्या? बेटे ने कहा फिर क्या? मैं चोरी नहीं करूँगा, आप कुछ भी करो लेकिन मैं चोरी नहीं करूँगा।
1: इतनी अच्छी बात। देखिए सियादत, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वालदेन जो हैं वो गफलत में होते हैं, शायद पढ़े लिखे नहीं होते हैं या उनकी कोई मजबूरी होती है कि वो अपने बच्चों को शायद किसी वजह से ये कहते हैं कि ये काम सही नहीं, आप ये काम कीजिए। लेकिन बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उनका जो आजकल अवेयरनेस है बच्चों में वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो बच्चों का क्या फर्ज है फिर बताएं?
2: अपने इल्म का सही इस्तेमाल करके उन लोगों को सिखाएं जो गफलत में मुब्तला।
1: बिल्कुल सही है। मैं हमेशा आपसे इस प्रोग्राम में कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को भी आपको ये बात बतानी है, अगर उन्हें कोई बात नहीं पता है, जैसे आप अपनी दादी हैं, आपकी मदर हैं, आप उनको फोन चलाना सिखा सकते हैं, हाँ, ताकि वो भी आज की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर सके। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चीज आपको आती है, जो काम आपको आता है, जो हुनर आप में है, आपका ये फर्ज बनता है कि उसको आप ट्रांसफर करें। जैसे आपने आज देखा होगा कि आज मैंने मौका दिया सियादत को कि वो मेरे साथ प्रोग्राम एंकर करें, एज को एंकर काम करें। इसी तरह से सब बच्चों को मौका मिलेगा एक एक बार कि वो इस सीट पे बैठ के मेरे साथ प्रोग्राम एंकर करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग हो। कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाऊँ, तो उसके बाद भी तो कोई होना चाहिए जो आपके साथ बातें करे। तो इसलिए सब बच्चों का मौका जरूर सब बच्चों को मिलेगा एक एक करके, ताकि जिस तरह से हम चाहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन के स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो, आपकी बातचीत अच्छी हो, इसलिए आपको सभी बच्चों को ये मौका एक एक बार जरूर दिया जाए।
0: मेरा नाम आयशा है, आज आपको पानी के बारे में बोलूंगी। पानी, पानी से जिंदगी है, पानी से हर कुछ है, लगती बगैर पानी बेरंग जिंदगानी, अनमोल है ये दौलत, देती है सबको राहत, पानी से फूल और फल है, शादाब खेत और जंगल, जब तक रहेगा पानी कायम है हर निशानी, जिस जाना होगा पानी हर चीज है बेमानी, जिस मुल्क में होगा पानी हर सब हो शादानी, ठंडा मिले जो पानी सेहत बने सुहानी, रब की बड़ी इनायत है कीमती ये दौलत, ये बाकी वसलम।
1: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम सुहाना शफीक है
1: जी। कहाँ से आई हैं आप?
3: गुसू पुलवामा।
1: गुसू पुलवामा से आई हैं। पुलवामा के बारे में कुछ बताएं।
3: पुलवामा एक मशहूर शहर टाउन है
1: जी,
3: जहाँ पे सेब भी उगते हैं, बादाम का एक गांव भी है जहाँ पे मैं रहती हूँ गुसू, वहाँ पे बादाम की एक अच्छी वारी है।
1: अच्छा, वहाँ के बादाम बहुत मशहूर है।
3: हाँ।
1: वैसे भी जो हमारे साउथ का फ्रूट है वो बहुत मशहूर है, जैसे कि शुपियन को एप्पल टाउन कहा जाता है, इसी तरह से पुलवामा में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और यहाँ पुलवामा में हमारे इंडस्ट्री भी बहुत है, इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, वो भी पुलवामा में आती है।
3: आज मैं सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान के बारे में बात करूंगी। सोशल मीडिया हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, इसके बहुत से फायदे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से रابطے में रह सकते हैं, हम नई मालूमात हासिल कर सकते हैं, तालीम से मुतलिक चीजें सीख सकते हैं और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रह सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी है। इसका ज्यादा इस्तेमाल वक्त जाया कर सकता है, बेज औकात गलत मालूमात भी फैल जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी पढ़ाई और सेहत पर कम तवज्जो देते हैं। मेरी राय में सोशल मीडिया एक मुफीद चीज है, अगर हम इसे जिम्मेदारी और इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें। शुक्रिया।
1: क्या नाम है आपका?
4: मैं महक बशीर, आज आपके सामने अपने गांव की कुछ मालूमात पेश करूंगी। दनहामा, जो कि शहर श्रीनगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर वाका है, एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव है। दनहामा के इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ है, जिनकी वजह से इस गांव की खूबसूरती में इजाफा होता है। दनहामा के लोग सीधे सादे होने के साथ साथ तहजीब याफ्ता और तालीम याफ्ता भी है।

0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सानिब है और मैं आप सामाइन के सामने इकराहत इंदौरी साहब की एक मुख्तसर सी नज़्म पेश करूंगा। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते। रेंगने की भी इजाजत नहीं हमको वरना, रेंगने की इजाजत भी नहीं हमको वरना, हम जिधर जाते नए फूल खिलाते जाते। मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते। मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, लोग हंसते हैं मुझे देख के आते जाते। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। शुक्रिया।

0: तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं फुरकान से वन माह उत्सव के बारे में।
1: वन महोत्सव, जिसे शजरकारी का कौमी त्योहार भी कहा जाता है, एक ऐसा अहम मौका है जिसका बुनियादी मकसद दरख्त लगाने की अहमियत को उजागर करना, जंगलात के तहफ्फुज़ के बारे में अवाम में शऊर पैदा करना और माहौल को सरसब्ज और शादा बनाना है। वन का मतलब जंगल और महोत्सव का मतलब त्योहार है, लिहाजा वन महोत्सव का मफहूम जंगलात का त्योहार है। ये त्योहार हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और नए पौधे लगाने के लिए बेहतरीन हालात मुयस्सर होते हैं। दरख्त अल्लाह ताला की एक अजीम नियामत है, ये न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों, परिंदों और दीगर जानदारों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, फिजा को साफ रखते हैं, मौसमी तब्दीलियों के असरात को कम करते हैं और जमीन को खूबसूरती बख्शते हैं। वन महोत्सव हमें ये पैगाम देता है कि अपनी आने वाली नस्लों को एक महफूज, सरसब्ज और सेहतमंद माहौल देना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने और उनकी हिफाजत करने की जरूरत है। वन महोत्सव की तारीख, वन महोत्सव का आगाज भारत में सन 1950 में उस वक्त के मरकजी वजीर ज़राअत के एम मुंशी की कोशिशों से किया गया। इस मुहिम का मकसद मुल्क भर में जंगलात के रुकबे में इजाफा करना, माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखना और आवाम को दरख्तों की अहमियत से आगाह करना था। वक्त के साथ साथ ये एक कौमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें सरकारी इदारे, तालीमी इदारे, समाजी तंजीमें और आम शहरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। आज वन महोत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि माहौलियात के तहफ्फुज़ की अलामत बन चुका है। इस मौके पर लाखों दरख्त लगाए जाते हैं और लोगों को उनकी देखभाल की तरगीब दी जाती है। दरख्त इंसानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है, अगर दरख्त ना हो तो जमीन पर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके माहौल को साफ रखते हैं। दरख्त गर्मी को कम करते हैं, बारिश के निजाम को मुतवाजन रखते हैं और जमीन की जरखेजी में इजाफा करते हैं। दरख्तों से हमें लकड़ी, फल, फूल, अद्वियात, कागज, ईंधन, रेशे और बेशुमार कुदरती वसाइल हासिल होते हैं। आज पूरी दुनिया माहौलियाती आलूदगी के मसले से दोचार है। गाड़ियों से खारिज होने वाली जहरीली गैसें, प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल और जंगलात की कटाई ने माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसके नतीजे में आलमी दर्जे हरारत में इजाफा होता है, बेमौसम बारिशें होती है, शदीद गर्मियां बढ़ती है, खुश्क साली होती है, सैलाब और दीगर कुदरती आफात में इजाफा हो रहा है। दरख्त कुदरती फिल्टर का काम करते हैं, ये फिजाए आलूदगी को कम करते हैं, शोर में कमी लाते हैं, गर्दो गुबार को जज्ब करते हैं और माहौल को ठंडा रखते हैं। इसलिए माहिरीन माहौलियात ज्यादा से ज्यादा शजरकारी पर जोर देते हैं। वन महोत्सव मनाने का मकसद, वन महोत्सव मनाने के कई अहम मकासिद है, जैसे अवाम में दरख्तों की अहमियत के बारे में शऊर पैदा करना, जंगलात के तहफ्फुज़ की तरगीब देना, माहौलियाती आलूदगी को कम करना, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना, कुदरती वसाइल का तहफ्फुज़ करना, आने वाली नस्लों के लिए साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना, लोगों में दरख्त लगाने और उनकी देखभाल की आदत पैदा करना। तालीमी इदारों का किरदार, स्कूल, कॉलेज और जामियात वन महोत्सव को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात मुनाकद की जाती है, जैसे शजरकारी मुहिम, तकरीरी मुकाबले, मजमून नवीसी के मुकाबले, पोस्टर साजी, क्विज मुकाबले, माहौलियात से मुतालिक सेमिनार और वर्कशॉप्स। तलबा को सिर्फ दरख्त लगाने की तरगीब देना काफी नहीं बल्कि उनकी मुनासिब देखभाल का शऊर भी पैदा करना है, ताकि लगाए गए पौधे बड़े होकर मजबूत दरख्त बन सके। हर एनजीओ, हुकूमत मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए जंगलात के तहफ्फुज़ और शजरकारी को फरोग देते हैं। महकमा जंगलात और मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें खूब पौधे तकसीम करती है और आवाम को दरख्त लगाने की तरगीब देती है। शहरों में सड़कों के किनारे, पार्कों, स्कूलों, सरकारी दफातर और खाली जमीनों पर शजरकारी की जाती है। देसी इलाकों में भी किसानों को जरई शजरकारी की तरगीब दी जाती है, ताकि जरई पैदावार के साथ साथ माहौल भी महफूज रहे। जंगलात की कटाई के नुकसान, जंगलात की कटाई के नतीजे में कई संगीन मसाइल पैदा होते हैं, फिजाई आलूदगी में इजाफा,

जमीन नन्ने मुन्ने बच्चे अपना प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे होनहार। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

نماز پور کابسے سبوجا یان بوجا توجمان

Nezuka! Portvadej! Batrovka!

واه روا چا دکلایون نخوید کامسی سبوجا یان بوجا

چو سلطان سوز وایان گوشو پنیو بوزم سی سو بوزیا یان بوزیا

0: آش سلطان سوز وایان
1: چه سلطان سوز وایان بوش پنیو بوز مسای سبوجا

0: پک نارن دیتم جوش راز کرا نام پراموش
1: پک نارن

халаю судоросей. Субозя, я не бозя.

Зорочка, Нарсей, Субозя, Ян Бозя.

0: sen. Yaşarım mandı setaşar. Mandı bu umut setaşar. Mandı bu umut. Yağmı panye star sen. So boja yan boja toyma. Ya
1: Samim Otram az şu maruf da barguzide şehir niyam sabun yom vesal. Az silsilesimiz bozutayı ye khasusi program Gaşi Taruk. Tahrir Muhammed Yusuf Deng. Ya Akashvani ka Srinika station hai. Samim दिन के 12 बजने वाले हैं। चंद ही लम्हों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी में खबरें समाप्त करेंगे। जरा सा इंतजार फरमाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said that the VBG Ramji Act has successfully transitioned from Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh will be leading the Indian delegation to Geneva, Switzerland from tomorrow to participate in the inaugural United Nations Global Dialogue on AI Governance. India will host a two-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship beginning tomorrow in Kochi, Kerala. Ministry of Women and Child Development said the senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing

दोस्त बन बन के मिले मुझसे मुझको मिटाने वाले। समीन, आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत अशआर समाप्त किए। आइए अब पंकज उदास को सुनते हैं।

समय आपको बता दें कि गजलें आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। जॉन एलिया का लिखा एक शेर याद आ रहा है, हमने देखा तो हमने ये देखा, हमने देखा तो हमने ये देखा, जो नहीं है वो खूबसूरत है।

0: सबीन, आप गजलें समात कर रहे थे, आखिर पे आपने पंकज उदास की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल समात की। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में ठीक 12:30 हो रहे हैं। ये वक्त है खबरों का, आइए समात करते हैं पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवारुल हक। श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुसनखूबी जारी है और इस साल इस यात्रा का आगाज़ यात्रियों की हौसला अफजा तादाद से हुआ है, जिसके चलते पहले दो रोज़ में 32,313 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इसमें पहले दिन दर्शन करने वालों की तादाद 14,515 है, जबकि दूसरे दिन 20,145 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। आज भी बालतर और नुनवन के बुनियादी कैंपों से कई हज़ार यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया, जबकि जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज भी 6,721 यात्री वादी पहुंच रहे हैं। यात्रा के रास्तों पर श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए सलामती समेत तमाम तर इंतजाम दस्तियाब कराए गए हैं। इस बारे में कई यात्रियों का कहना है।
2: हम महाराष्ट्र से आए, आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था मिली। हमको सवेरे जाना है और हम यात्री के लिए यहाँ पर जो सुविधा मिली बहुत अच्छी मिली। खाना पीना की व्यवस्था बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो सेवेकरी है वो बहुत अच्छे लगे। बड़े प्यार से हमसे आए और हम 6 यात्री है और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा है और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर।
3: मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली साथ। बालटाल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी, जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं।
1: आज दिन में 11 बजे तक मजीद 10,319 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की कुल हम निज़ामत और ज़मीनी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। LG ने कहा कि इस साल यात्रा ट्रैक्स पर यात्रियों की तादाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जा रहा है, लिहाजा यात्रियों की सलामती और सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल पर अमल करना लाजमी है। LG ने तमाम महकमों और सलामती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वह सभी मुतल्लिकीन बशमूल लंगर तंजीमों, खिदमत फराहम कुनंदगान और दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करें। अदालत उज़्मा की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए जिन श्रद्धालुओं ने पेशगी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपना इंदराज करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतज़ार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे ज़ुमरे के शहरों, नीज़ दूर दराज इलाकों में हवाई सफ़र को एक नई जहत देने की गरज से विकसित उड़ान स्कीम के नए मरहले की शुरुआत

की है। इस स्कीम के तहत 28,840 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से ऐसे शहरों में हवाई रबते को मजीद मजबूत बनाया जा सकेगा। इसी दौरान वजीर अजम ने गुजरात के सानंद इलाके में शुरू किए गए CG सेमी कंडक्टर प्लांट को मुल्क के इलेक्ट्रॉनवी इनकलाब का अगला कदम करार दिया है। उन्होंने इस जदीद तरीन आउटसोर्सड प्लांट का इफ्तः करते हुए कहा कि इसमें हर साल 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर ने प्लांट में काम करने वाले इंजीनियरों और दीगर मुलाजमीन की मेहनत की सराहना की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे की रनवे बंद करने से मुतल्लिक मुजवजा मनसूबे को रद्द करने पर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में बिला खलल हवाई राबिता दस्तियाब रहेगा और हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों को राहत मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम, ताजरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये मामला ज़ाती तौर पर मरकज़ के साथ उठाया था। उन्होंने कहा कि सियाहती सीजन के दौरान हवाई रबते का बरकरार रहना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने बैंक में लाखों रुपए फ्रॉड मामले में फर्द जुर्म दाखिल की। इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज में क्राइम ब्रांच ने कहा है कि ये चार्जशीट चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में दाखिल की गई है, जिसमें गलत तरीके से कर्जा हासिल करने की पादाश में कई अफराद के नाम दर्ज हैं। मालूम हुआ है कि कसूरवार अफराद ने जाली दस्तावेजात पेश करके साल 2007 में जम्मू कश्मीर बैंक की रेजिडेंसी रोड की शाख से 30 लाख रुपये का CC कर्जा और जैनाकोट शाख से मजीद 30 लाख रुपये का टर्म लोन हासिल किया था। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: Sunday Request Show is on the primary station of Akashvani, and you're enjoying this program with your hosts Mukhtar, and with me is Sabreen. Mail us at sundayrequestshow@gmail.com.
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
3: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
2: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
3: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
4: Well, Mukhtar, we have received one more mail, and this is sent by Rubina Qureshi from Langate, writing in this show after a long time. Today, my message is for all the listeners, and the message is, respect and you will be respected.
0: Quite
4: Do you
0: true,
4: have to say anything on it?
0: Sabreen, I'll say one thing. Respect others and you will be respected, but what if someone doesn't respect you?
4: So you should not respect.
0: You shouldn't respect.
4: Absolutely. Isn't it?
0: Yeah, that's true. Because you can't, you know, bow down
4: every
0: to people
4: time.
0: Every time, right? So you have your own individuality, your
4: Absolutely.
0: Own personality.
4: Absolutely.
0: And that is very unique to you, isn't it?
4: Absolutely.
0: Hmm. So a track coming your way now, it's going to be by Bangles. And the track is Walk Like an Egyptian, but we will walk like Kashmiris.

जी समीन, आप समाप्त कर रहे थे आप सबका फेवरेट शो संडे रिक्वेस्ट शो। ये शो आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे सबरीन मुश्ताक और मलिक मुख्तार। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक 1:50 होने वाले हैं। चंद इलामों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और हिंदी में खबरें समाप्त करेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सरकार ने आबनाए हुरमुस के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहुत तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने मग़रबी एशिया महाज़ाराई में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज़ के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजिबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है, जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूह से सरकार को अंदरून मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई LNG अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। आबनाए हुरमुज़ के रास्ते LNG की खेप में रुकावट पड़ने के बाद इस साल मार्च में लाजमी अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत ये इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया गया था। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 इस महीने की पहली तारीख से नाफिज हो गया है। वजीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मस्कूरा मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद मंजूर की और इसे जारी किया। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम MGNREGA की जगह विकसित भारत जी राम जी एक्ट को कामयाबी के साथ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि MGNREGA पर अमल दरामद में 3 साल लग गए थे, जबकि विकसित भारत जी राम जी एक्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 1 दिन में ही नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि इस एक्ट के तहत अगले 5 साल के दौरान 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाया जाएगा ताकि विकसित भारत के नजरिए की रफ्तार में तेजी लाई जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात

तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इक्तसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि इस शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इक्तसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को ये हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तिहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके जरिए बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मजकूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इत्तलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिल एतराज मवाद दिखाया गया है जिससे बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका अहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। छत्तीसगढ़ के मारूफ पंडवानी गुलुकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलसुबह 3:15 बजे के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुरसर आवाज़, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अलाक़वामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

0: Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan releases 25,000 crore rupees assistance to states under Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act. Centre orders Meta to remove child abuse ads from Instagram, seeks reply in 7 days. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh, Tijan Bhai, passes away. President, Vice President and Prime Minister express grief over her demise. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today. And in ICC Women's T20 World Cup Finals, England to face Australia in London this evening. And with that, we end the midday news.
1: हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन, इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH पर और हम आपसे मुखातिब हैं आप ही के मोबाइल फोन्स पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप के जरिए। समीन, हमारा अगला ऐलान समाप्त कीजिए। जो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 77.8 मीटर ते FM 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। वली समीन के कशरी गजल बोझो।

चार पांच अपने बाग में रखने के लिए फॉर पॉलिनेशन पर्पजेज, उनको हम वो कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे साथ, उनको हम जो हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर है वहाँ से भी उनको वो कॉलोनीज हम रेंट बेसिस पर देते हैं, और वो जो कस्टम हायरिंग सेंटर है वो चलाने वाले के को भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाती है, और इस कस्टम हायरिंग सेंटर को हमने वुमेन एम्पावरमेंट के तहत एक वुमेन फार्मर को ही दिया हुआ है। तो इसके अलावा जो है हमारा एक और जो स्कीम चल रही है इस वक्त वो है JK SIP। जेके सिप में हमारे इस वक्त चार ब्लॉकों में ये बिल्कुल एप्लीकेबल है ये स्कीम, जिसमें बारामुल्ला, गुंजर, टंगमर्ग और पटन। तो यहाँ के रहने वाले जो भी फार्मर्स हैं या बी कीपर हैं या एस्पेरेंट्स जो हैं जो इस बी कीपिंग में आना चाहते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करके तो इससे इस स्कीम का भी हमारा अपना फ़ायदा वो ले सकते हैं। इस स्कीम में जो टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज उनको दी जाती है वो 60 है, और इसमें जो हमारी रेट ऑफ सब्सिडी जो है वो 50% है। ये भी एक सिंपल प्रोसेस है, ये भी बिल्कुल ऑनलाइन सर्विस है, घर में बैठ के या नियरेस्ट KKG जो है किसान खिदमत घर में जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस स्कीम से वो मुस्तफायद हो सकते हैं। तो बारामूला चूँकि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर कभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फंड्स आते हैं तो उसके तहत भी एक आदमी जो है या एक जो एस्पिरेंट है वो 10 कॉलोनीज का एक यूनिट ले सकता है 50% सब्सिडी पे। तो कैपेक्स के में भी कभी जब फंड्स आते हैं तो कैपेक्स में भी हमारा 10 कॉलोनीज का यूनिट बनता है, उसमें भी 50% सब्सिडी का बेनिफिट जो है वो एक बेनिफिशरी को दिया जाता है। जो हमारी अब मैं आपको थोड़ी मेजर अचीवमेंट्स के बारे में बताऊँ, HADP के अंडर हमारा एक एपीथेरेपी सेंटर जो है जिसमें हम बीज के द्वारा कुछ थेरेपीज करते हैं, जैसे किसी की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या कोई नेक की प्रॉब्लम हो हड्डियों की, तो उसमें वो हमारा सेंटर जो है बिल्कुल वाडूरा में, यानी जो हमारी सुकास्ट वाडूरा है सोपोर में, वहाँ पे वो एस्टेब्लिश्ड है। तो वहाँ भी वो काम कर रहा है, HADP के अंडर ही उसको हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। और उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हेडक्वार्टर पे नूरबाग में यहाँ पे एक हमारी मिनी हनी टेस्टिंग लैब भी HADP के अंडर ही हमने एस्टेब्लिश किया है, वो पब्लिक सेक्टर में है। तो कोई भी आदमी उस लैब का भी हमारा फायदा और अपनी जो प्रोड्यूस है जो उसका वो वहाँ आके उसको टेस्ट करा के उसका फायदा ले सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ पे लगा हुआ है, जो रा हनी है उसको प्रोसेस किया जाता है, 2 क्विंटल उसकी कैपेसिटी है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला से चाहे तो वो आके यहाँ अपना वो हनी प्रोड्यूस लाके तो मिनिमल चार्जेस पे जो उसका वो प्रोसेसिंग भी हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास HADP के ही अंडर हमने 2 बी गार्डन्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, और इस साल में भी कुछ फंड्स हमारे पास आए हैं तो उसमें हमें एक और गार्डन भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उसमें हम जो बी फ्रेंडली प्लांट्स हैं फ्लोरा जो है उसको हम वहाँ पे प्लांट करते हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस भी आ जाए कि भाई ये प्लांट्स जो हैं ये बी फ्रेंडली हैं, और वो वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा प्लांट है जिसमें से हमें नेक्टर मिल सकता है, कौन सा प्लांट है जिसमें से हमें पोलन मिल सकता है, या कौन सा प्लांट है जिसमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ मेजर अचीवमेंट्स हमने ये की हुई हैं, तो इसके हवाले से हम मजीद और भी कर रहे हैं। इस वक्त जो रिसेंट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भी हमारे कुछ फंड्स आए हुए हैं, तो हम वो काम भी हम कर रहे हैं, तो उसमें भी जितना होगा हम कर रहे हैं। हम बस हमारा मकसद और जो है हमारा जो एम है वो यही है कि इसमें यंग नौजवान खासकर वुमेन फोक जो है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लेबोरियस वर्क नहीं है, ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़्यादा लो रिस्क है, तो हम चाहते हैं कि इसमें जो वुमेन फोक है या हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं अनएजुकेटेड यूथ वो इसमें आए और अपना यहाँ पे आके एपिकल्चर से जो स्कीम्स हैं हमारी चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारी अपनी UT की, तो उनसे वो फ़ायदा लें और अपनी जो है अपने लिए रोज़गार लें, और इसमें अपना रोज़गार के साथ साथ वो अगर अपने यूनिट्स एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें वो दूसरों को भी अपना थोड़ा एक दो बंदों को भी वो रोज़गार दे देते हैं। तो उसके अलावा जो हमारे मैं आपको एक और बात यहाँ कहूँगा कि हमारी जो यहाँ नेटिव बी है जिसे हम एपिस सेरेना के नाम से जानते हैं, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान पूरा है। तो अब हम HADP के ही अंडर उस जो हमारी वो स्पीशी है एपिस सेरेना जो यहाँ की लोकल है
उसको भी प्रोडक्ट की प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उसकी डेवलपमेंट की जा रही है। उसमें हम जो हैं वो फार्मर्स या बी कीपर्स जो हैं जिनके घरों में वो ऑलरेडी होती हैं, तो उनको हमने अब वो जो साइंटिफिक बी बॉक्सेस हैं इसके लिए, हाइव्स हैं उसके लिए, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। HETP के अंडर ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपनी जो कॉलोनीज जो उनकी किसी दीवार में है या लकड़ में है या किसी उल्टी जगह पर हैं

0: वहाँ से उनको हम ट्रांसफ़र करके वो उस डब्बे में डाल के देते हैं, ताकि उनको ये पता चल जाए कि इसमें साइंटिफिक बी कीपिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो मज़ीद हमारा यही कोशिश रहेगी, हम आगे भी ऐसे करते रहें ताकि लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो।
1: सामीन, किसानों की तरक्की के लिए मरकजी सरकार ने चंद बरस पहले पीएम किसान नाम की एक फायदा बख्श स्कीम शुरू की। पेश है इस स्कीम के बारे में हमारे नुमाइंदे मुबशर रुफाई की एक खास रिपोर्ट।
2: सामीन, पिछले 12 बरसों के दौरान मरकजी सरकार ने पूरे मुल्क की आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम और स्कीमें शुरू की। ये स्कीमें लगभग समाज के सभी तबकों को मुस्तफीद करती रही हैं और इन स्कीमों की बदौलत इन लोगों के मियारी हयात में नुमाया बेहतरी देखने को मिल रही है और वो कामयाबी के साथ अब जिंदगी गुजार पा रहे हैं। इन्हीं इख्तिराई स्कीमों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम भी शामिल है। मुल्क के किसानों की फलाह बहबूद के लिए शुरू की गई ये स्कीम वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू की। अगरचे ये स्कीम फरवरी 2019 से शुरू की गई, तहम स्कीम के तहत मुराआत किसानों को जनवरी 2019 से ही दिए गए। पीएम किसान स्कीम के तहत मुल्क के अहल किसानों को हर साल 6,000 रुपए की यकीनी माली मौनत फराहम की जाती है। ये रकम हर 4 महीनों के बाद 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सालाना बराह रास्त किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में DBT के जरिए मुंतकल की जाती है। पूरे मुल्क में इस वक्त 9,40,00,000 किसानों को इस फायदा बख्श स्कीम के दायरे में लाया गया है और पिछले महीने इस स्कीम की 23वीं किस्त के तहत वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए की रकम वागुजार की। जम्मू कश्मीर में भी लगभग 8,70,000 से ज्यादा किसान इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। ये स्कीम किसानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में एक अहम रोल अदा कर रही है। पीएम किसान की बदौलत किसान वक्त पर बीज, आलाती कशावर्जी और दीगर जरिए इनपुट्स वक्त पर खरीद पाते हैं और आसानी के साथ अपनी काश्तकारी कर पाते हैं। इस स्कीम की रूह से किसानों की जरी पैदावार और पैदावारियत में नुमाया इजाफा हुआ है और वजीर अजम के तरक्याती नजरिए के ऐन मुताबिक उनकी आमदन भी दोगुनी हो गई है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसानों की माशी हालत बेहतर होने के साथ साथ मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के लिए गिजा भी दस्तियाब हो रही है। महकमे ज़राअत इस स्कीम को मौसर तरीके पर अमलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी अहल किसान इस स्कीम के दायरे से बाहर न रहे। किसान इस स्कीम की तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए पीएम किसान पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये स्कीम आने वाले वक्त में किसानों के लिए मजीद फायदा बख्श साबित होगी।
1: सामिन, इन दिनों पूरे जम्मू कश्मीर में सड़क राबितों को बेहतर बनाने और सड़कों का जाल बिछाने के लिए मुतादित प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर इन सड़क प्रोजेक्टों की बदौलत लोगों को कनेक्टिविटी की बेहतर सहूलियात दस्तियाब हो रही हैं। जिला बड़गाम में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अमलाए जा रहे सड़क प्रोजेक्टों के ताल्लुक से जब हमारे बड़गाम के नुमाइंदे शौकत शाह ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन बीरवा पीरजादा सज्जाद हुसैन के साथ बात की, आइए समाप्त करें।
3: सज्जाद साहब, आप हमें बताइए, जो आपका डिवीजन है बीरवा डिवीजन है, तो रोड्स एंड बिल्डिंग्स आपका महकमा है, आपके महकमे का काम जो है वो सड़कों, पुलों और सरकारी इमारतों की तामीर और इनकी देखभाल का काम आप करते हैं। आप हमें बताइए आपकी एरिया में क्या रोड लेंथ है, क्योंकि आपकी तैनाती जो है वो दूर दराज इलाके में है, बीरवा एक दूर दराज इलाका है बड़गाम का, और सड़कें जो है वो इलाके की पसमानदगी को दूर करने में काफी अहम रोल अदा करती है। आप हमें बताइए रोड लेंथ आपके एरिया की और कितनी प्रोग्रेस है अभी तक।
4: जहां तक ताल्लुक है बीरवा डिवीजन की रोड लेंथ की, वो मैं आपको बता दूं वो 550 किलोमीटर है टोटल।
3: 550 किलोमीटर
4: जो हमें लास्ट ईयर अंडर डिफरेंट स्कीम्स जो चलती है हमारी, उनमें जो CNT है, पोर्ट होल्स है, UT कैपेक्स बजट है, नबार्ड है, FC ग्रांट्स है, जो पिछले साल का टारगेट था हमें मैग्नेटाइजेशन का, वो हमें था 38.91 किलोमीटर टारगेट था, जिसमें हमने 34.55 किलोमीटर अचीव किया है, 90+% बनती है। इसी तरीके से डिफरेंट पुल भी यहाँ उन पे भी काम चल रहा है अंडर नबार्ड ब्रिज सेक्टर, जिसमें 5 बड़े पुलों पे काम चल रहा है, जिसमें एक लगभग मुकम्मल हुआ है, उसमें उसके अप्रोचेज में सिर्फ तारकोल बिछाना बाकी है। इसी तरीके से इस साल के आखिर तक मजीद 3 पुल मुकम्मल होने की तवक्का इंशाल्लाह है हमें।
3: तो कौन कौन सा पुल है ये जो इस वक्त आप इस साल आपका टारगेट है?
4: एक तो है तकियाबल कानीगुंड, दूसरा है बीरवा मागाम रोड पर मैन ब्रिज बीरवा, तीसरा है बीरवा चिवडारा, और चौथा जो लगभग मुकम्मल हुआ है 95%, वो है लाहौरी चक नोपोरा, वो लगभग

0: वो कंप्लीट हो गया है, उनके अप्रोचेस में सिर्फ तार कोल बिछाना बाकी रह गया है।
1: कौन कौन सी स्कीमें हैं, चाहे वो यूटी सतह की हैं या सीएसएस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन कौन सी स्कीम है जिसके जरिए से आप काम कर रहे हैं, जिसके तहत आप काम कर रहे हैं?
0: जी वो सीएनपी है, पोर्ट होल्स है, यूटी कैपेक्स बजट है, नाबार्ड है, एफसी ग्रांट्स है, और इसी तरीके से इस साल हमने 40 किलोमीटर का टारगेट रखा है इस साल का, जो हम पूरी कोशिश करेंगे हम ये अचीव करें। बस दुआ करें कि पर्शियन गल्फ में अमन रहे, चूंकि तारकोल हमें वहां से आता है, वो अमनो अमान हो जाए वहां, ताकि हम हमारा जो टारगेट है इस साल का इस पे हम अपना इस पे हम अमली जामा पहना सके।
1: सज्जाद साहब, अक्सर लोगों का मानना होता है, लोगों की शिकायत रहती है कि एक साल महकमे ने काम किया, फिर दूसरे साल या तीसरे साल ही सड़क जो है वो गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बीरवा पटगाम रोड की बात करें, दो तीन साल शायद एक दो साल कबल इस सड़क पर मैग्नमाइजेशन का काम मुकम्मल हुआ, लोगों का इल्जाम है क्योंकि वहां से हमारी शिकायत आती है कि अभी गड्ढे बने हैं सड़क पे, तो क्या आपको लगता है कि मैग्नमाइजेशन पे कुछ कंप्रोमाइज मत होता है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बाजार टेस्टिंग होती है। मैं लोगों से इस्तेदा करूं कि जब रोड बनाता है महकमा तो हम वक्फ करते हैं इसको आवाम के लिए। मेरी गुजारिश है आवाम से कि वो चूंकि ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, वो इसका ख्याल रखें। इसमें कुछ ये भी आ रहे हैं, ब्रिक किल्न्स आ रहे हैं, वो बड़े बड़े डंपर ला रहे हैं, मिट्टी ला रहे हैं साथ, वो उन जगहों पर रोड खराब हो जाते हैं। मेरी लोगों से यही इस्तेदा है कि चूंकि ये प्रॉपर्टी आप लोगों की है, आपके लिए है, तो इसकी हिफाजत करना भी उनका अवलीन फर्ज है।
1: आपने खुद ही जिक्र की कि काफी ब्रिकलर्स है, क्या वो आपके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं कि जो उनके एरिया, क्योंकि वहां से जो टिप्पर लोड बरदार गाड़ियां वहां से जो आती है, वो कीचड़ वो गर्दा सारा सड़क पे आ जाता है, तो जिससे सड़कें खराब हो जाती है, क्या उस हवाले से उनके साथ आप राबते में नहीं रहते हैं कि आपके एरिया का जो पोर्शन है वो मैग्नमाइज हो ताकि आरएनबी का पोर्शन जो है वो बच जाए?
0: राबते में है, उन्हें हमने कह दिया है कि आप जो आपकी ब्रिकल्स की तरफ जो आपकी अपनी सड़क जा रही है वो मेहरबानी करके आप उसको पक्का करें, और ज्यादा ये ओवरलोडेड जो ये बड़े बड़े डंपर्स लाते हैं उनको अवॉइड ही करें।
1: दीरवा के नजदीक जो पुल है, जो ऑपरेशन सदबाना के तहत जो आर्मी ने तामीर किया था, वो बोसीदा हो चुका है, लेकिन लोगों का इल्जाम है कि वहां पे काम जो है, इस पुल पे काम काफी सुस्त रफ्तार से जारी है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
0: नहीं नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि उस पर हमने काम शुरू किया था नवंबर 2025 में, यानी कि 6 महीने हो गए काम शुरू किए हुए। प्रोग्रेस इस वक्त है लगभग 55% उसकी प्रोग्रेस है। 25 में अगर हमने शुरू किया है एज पर डीपीआर, उसका 3 साल जो है टाइम वो मुकम्मल होने का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक ही साल में उसको कंप्लीट करें। ये गलत है कहना कि उस पे काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है काम उस पे। बजाय 3 साल के हम एक ही साल में उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।
1: कुछ रोड्स और भी हैं जो मागा नाजन से कोलहामा रोड है, वहां पे भी हमें कई शिकायतें आती हैं कि रोड खस्ता है, या मागा अमृतसना है, ओहनगाम है, वहां पे भी। कब तक आप लोगों को आश्वासन देंगे कि ये रोड सारी जो है वो क्लियर हो जाएंगे?
0: मैंने आपको पहले ही कहा, इस पिछले साल का टारगेट था हमें 48.91 किलोमीटर, जिसमें हमने 34.55 किया है। इस साल का टारगेट 40 किलोमीटर है, और रफ्ता रफ्ता हम कोशिश करेंगे हर एक रोड को ठीक करने की।
1: क्या हमारे एरिया में कोई सीएसएस स्कीम चल रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम?
0: हमारी स्कीम्स यही है, सीएनटी, पोर्ट होल्स, यूटी कैपेक्स बजट, नाबार्ड, एफसी ग्रांट, यही स्कीम्स हैं जिनके तहत हम अपने रोड्स या पुल या तो तामीर करते हैं या उनको या उनकी मरम्मत करते हैं।
1: अपने एरिया के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि रूरल एरिया है, कितना कठिन है वहाँ पे सड़कों की तामीर करना?
0: हिली एरिया है, इट इज चैलेंजिंग, बट वी आर डिटरमाइंड, हम डिटरमाइंड है कि हम हर चैलेंज का को फेस करेंगे।
1: आपको लगता है कि जहाँ पे भी गाँव है, सड़क के किनारों पे बस्ती है, वहाँ पे ज्यादा रोड खराब हो जाते हैं, और आपकी क्या कोशिश रहती है कि हम लोगों को समझाने की कि आप रोड आपका है और आपको इसकी देखरेख आपको ही करनी है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सड़क जो बनाते हैं वो आवाम के नाम ही वक्त करते हैं, और ये अवलीन फर्ज है आवाम का कि वो भी आप उस सड़क की हिफाजत करें।
1: आपको लगता है कि
0: जो पानी न डालें, कूड़ा करकट वो निकालते हैं घर से और फेंकते हैं सड़क पे, सिर्फ सेंस प्रिवेल होना चाहिए हमारे आवाम में।
1: क्या रवां माली साल का जो हमारा बजट है, उस हवाले से काम शुरू हुआ है?
0: हाँ जी जी, काम शुरू हो गया, मैकेडमाइजेशन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, इंशाल्लाह पूरा टारगेट हम अपना कवर करेंगे।
2: سامعین مرکزی

0: रूठी सरकारों की तरफ से श्रीनगर और जम्मू के दरमियान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को इस ताल्लुक से शहर की हैसियत हासिल है। पिछले चंद बरसों के दौरान इस शाहरा को तरजीहात में शामिल किया गया और शाहरा को वसत देने के साथ साथ इस पर कई टनल प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किए गए। इस मुद्दत के दौरान कई फ्लाईओवर और वायाडक्ट्स भी तामीर किए गए, जिनकी बदौलत श्रीनगर और जम्मू के दरमियान सफरी वक्त में बहुत कमी वाका हुई और अब इन दो शहरों का सफर सिर्फ 4 घंटों महदूद हो गया है और आने वाले वक्त में इसमें और भी कमी आने की उम्मीद है। चंद रोज पहले इस शहरा पर डिगडोल और पंथियाल के दरमियान एक और टनल को भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। इस अहम पेशरफ के बारे में हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पटरू ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुभम यादव के साथ बात की। आइए समाप्त करें।
1: जो रिसेंटली आपने ट्रायल रन की है 3.5T3 का, उसका ट्रायल रन भी हुआ है, तो उसकी प्रोग्रेस क्या है? जो फ्लाईओवर यहाँ बानहल में बनाया गया है, तो इन दोनों जगहों पे कब तक ट्रैफिक है वो उस पे चलेगी, और ओवरऑल जो मरोग टनल है उसकी प्रोग्रेस क्या है सर?
2: जैसा कि आप जिक्र कर ही रहे हैं, ये जो रामबन बनिहाल सेक्शन है काफी फ्रेजाइल जियोलॉजी है यहाँ की। यहाँ के पहाड़ हर बारिश में सुनने को मिलता है, लैंडस्लाइड होती है, ये है। उन सबको देखते हुए ही यहाँ पे जो NHAI ने DPR बनाई थी, टनल्स और ब्रिजेस की बनाई थी, ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाई जा सके और कभी भी रास्ता बंद ना हो। उसी के सिलसिले में धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। उसी सिलसिले में एक 3.5 किलोमीटर की टनल हमारी पूरी हुई है, वो कनेक्ट करती है डिगडोल से पंथियाल को। इसमें हमने 29 जून को ड्राई रन किया। इसके अलावा इसके पंथियाल के आगे एक हमारा वायाडक्ट है जो मगरकोट और रामसू को कनेक्ट करता है, 810 मीटर का ये वायाडक्ट है। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ड्राई रन में सक्सेसफुल रहा, सारी टेस्टिंग वगैरह हो गई है। इससे यहाँ के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, कंजेशन नहीं होगा एरिया। इसके साथ साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि मरोग से डिगडोल वाली जो टनल है उस पे भी हमारा काम अब काफी स्पीड से चल रहा है। 50% से ज्यादा एक्सकेवेशन का काम सुरंग का हमने कर लिया है। अगले एक साल में हम एक ट्यूब खोलने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, अगर हमारी जियोलॉजी ठीक रही तो।
1: चंद्रकूट के पास राइट साइड में जो जब हम जाते हैं टूवर्ड्स नाशरी, जो वहाँ स्लाइड प्रून एरिया है, उसके लिए क्या कुछ किया गया है ताकि अगर बारिश हो जाएगी वहाँ से स्लाइड ना आ जाए?
2: नाशरी रोटरी पे जो स्लाइडिंग वाला एरिया है वहाँ पे उस एरिया को पहले पूरा क्लीन कर दिया गया। वहाँ पे एक दीवार बनाई जा रही है जिससे कि जो मलवा है वो रोड पे ना आए, बाकी उसके लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन के लिए DPR चल रही है।
1: दलवास पे जो फ्लाईओवर बनाए गए थे तो फिर एक दिन वहां से पहाड़ी खिसक के नीचे आ गई थी, अब उस रोड की कंडीशन क्या है?
2: दलवास में जो हमने वायाडक्ट बनाया था वो बनाया ही इसलिए था कि वहां से पूरा लगभग 2-3 किलोमीटर तक पूरा पहाड़ नीचे मूव होता है, वो पूरा एरिया डिस्टेबलाइज था। हमने वहां पे पाइलिंग करके वायाडक्ट बनाया, जब से हमने वायाडक्ट बनाया है वो अब एरिया स्टेबल है।
1: ओवरऑल जो आपकी प्रोग्रेस है बानहल से लेकर बराबर जो नाशरी तक आपका ज्यूरिडिक्शन है, स्ट्रेच है, कब तक पूरा ये स्ट्रेच कम्प्लीट हो जाएगा ताकि चलने फिरने में थोड़ी सी आसानी हो सकेगी?
2: स्ट्रेच मेरा उधमपुर से लेके काजीगुंड तक है, तो उधमपुर से लेकर के चेरानी नाशरी तक आपने देखा ही है कि हाईवे कंप्लीट हो चुका है। फ्लड के एक दो हमारे वैली साइड में प्रोटेक्शन के काम से वो अगले एक महीने में कंप्लीट हो रहे हैं। हाईवे दोनों तरफ का कैरेज वे हमने हर जगह चला के रखा हुआ है। इसके साथ साथ नाशरी से अगर हम रामबन के बीच की बात करें तो ये कम्प्लीट हो चुका है। रामबन में हमने कैफेटेरिया में कर्टन कवर बना दिया है जिससे ट्रैफिक स्मूथली जा रहा है। टनल किसी वजह से वो रुकी थी, लेकिन हम एक DPR बना रहे हैं, जल्दी ही वहाँ 4-लेन कनेक्टिविटी का भी कुछ न कुछ प्रावधान किया जाएगा। रामबन बनिहाल की बात करें तो रामबन बनिहाल में एक जो टनल हमने अभी 3.5 किलोमीटर की ओपन की है, इसके पैरेलल एक टनल है 2.6 किलोमीटर की, हम 2 महीने के बाद ओपन कर देंगे ट्रैफिक के लिए।
1: ओवरऑल नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से लोगों के लिए, यात्रियों के लिए क्या मैसेज रहेगी?
2: यात्रियों के लिए यही मैसेज रहेगी कि NHAI हमेशा रेडी है, हम ऑल मैन एंड इक्विपमेंट से रेडी है। बस मेरी सभी यात्रियों से है कि उनकी यात्रा मंगलमय हो, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ, और बस रिक्वेस्ट है कि सब सेफली चलें। कोई अगर अपनी पर्सनल व्हीकल से आता है तो ओवरटेक न करें, क्योंकि हिल एरिया में एक्सीडेंट का रिस्क
1: है। कोई हेल्पलाइन रखी है आपने ताकि लोग या यात्री आपके साथ संपर्क करें?
2: हमारी हेल्पलाइन है ऑलरेडी 1033 नंबर पे, कोई भी गाड़ी कभी भी ब्रेक डाउन होती है, किसी को प्रॉब्लम होता है 1033 पे कॉल करना है। हमारे पास नासरी से बनिहाल के बीच में 6 एम्बुलेंस है, इमीडिएटली 1033 पे कॉल करने के बाद उन एम्बुलेंस से कनेक्शन हो जाएगा, वो एम्बुलेंस स्पॉट पे आएगी। हमारे पास 2 अवे ट्रेन्स हैं, इमीडिएटली गाड़ी को साइड में ले जाएंगे, हर तरह के असिस्टेंस की प्रोवाइड हम कर पाए।
0: सामीन, हुकूमत सेहत के शोबे में भी कई फ्लैगशिप प्रोग्राम और स्कीमें चला रही है जिनके जमीनी सतह पर खातिरखा नतायज सामने आ रहे हैं। इन प्रोग्रामों की बदौलत लोगों को आला मयार की सहूलियात दस्तियाब हो रही हैं और उनके

फौजी दोस्तों, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में शोर फिल्म से ये नगमा समाप्त किया। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें थीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस नगमे की तर्ज बनाई है और ये जी हाँ ये अशआर हैं संतोष आनंद के। दोस्तों, बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो किसी किताब, उस्ताद या तजर्बे से नहीं बल्कि लोगों के रवैये से मिलता है। हम किसी के लिए वक्त निकालते हैं, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, उसके लिए मुश्किल दिनों में उसका सहारा बनते हैं और दिल में ये उम्मीद रखते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी तो वो भी हमारे लिए खड़ा होगा कहीं ना कहीं और हमारी मदद करेगा। मगर ज़िंदगी हमेशा उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। कुछ लोग आपके खलूस से फ़ायदा उठाते हैं लेकिन आपकी कदर नहीं करते। ऐसे लोगों से शिकवा करने के बजाय खुद को संभाल समझाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर ताल्लुक को बचाना फ़र्ज नहीं। जो ताल्लुक आपके लिए बराए अज़ियत हो, उसे मुनक़त्ता करना ही समझदारी है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी हाँ मुझे भाइयों, आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुना फिल्म आंधी में। गुलजार के बेहतरीन अशार आपने आज ही बर्मन की मौसीकी में समाप्त किए। दोस्तों, जिस दरख्त को तुमने पानी दिया, अगर वो आपको साया देने से इनकार कर दे तो दरख्त को काटो मत, बस उसके नीचे खड़ा रहना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद इंसान को राबिता रखने पर मजबूर करती है। दोस्तों, बानो कुदसिया कहती हैं, मोहब्बत ये नहीं है कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेटने का नाम है।

0: वाली भाई यू अनुरोध फिल्म से आपने ये नगमा समाप्त किया। आनंद बख्शी के अशार आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में सुने और ये आवाज, जी हाँ दोस्तों, ये मीठी सी आवाज थी किशोर कुमार की।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।
0: लीजिए फौजी भाइयों, गरोंदा फिल्म से समाप्त कीजिए ये प्यारा सा दुगाना, जिसे गाया है रूना लैला और भूपेंद्र ने।

0: और जब भाई वो रूना लैला और भूपेंद्र को आप सुन रहे थे फिल्म घरौंदा में। प्रोग्राम में नगमे और भी हैं, आपको और नगमे सुनवाने से पहले आइए सुनवाते हैं आपको ये एक छोटा सा तिजारती वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: जी दोस्तों, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है।

0: बता
1: बता दूं? वो यहीं पर
0: यहीं है।
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

फौज भाइयों, आपने ब्लैकमेल फिल्म से ये प्यारा सनकमा समाद किया। कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में ये थे राजेंद्र कृष्ण के अशार और ये आवाज़ थी किशोर कुमार की। दोस्तों, बदला लेने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि आप अपने जज्बात खुदा के नज़दीक रखकर फिर खुद को कितने कसूरवार समझते हैं और दूसरों को किस कदर सजा देना चाहते हैं। अगरचे दूसरे लोगों से गलती हो भी तो उसका फैसला ऊपर वाले पर छोड़कर हमें मुतमईन होना चाहिए क्योंकि ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं।

तुम महकती जवां चांदनी हो। दोस्तों प्यासे दिल से आपने ये नगमा समात किया, जान निसार अख्तर के अशार आपने खयाम की मौसीकी में समात किए, और ये जी हाँ ये आवाज़ थी मुकेश की।

फौजी भाइयों, तो लता मंगेशकर के गाए इस नगमे के साथ ही आपसे हम लेना चाहेंगे इस नशस्त से इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के नगमों का इंतखाब आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये जो नगमा आप सुन रहे हैं, यह है इस नशस्त का आखिरी नजराना।

तो फौजी भाइयों, इस प्यारे से मीठे से नगमे के साथ ही दीजिए आपने मेज़बान लाहुता फरहान को आज की नशस्त से इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होंगे और फिल्मी नगमों के साथ होंगे आपके खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय ठीक 3:50 हो रहे हैं। यह वक्त है खबरों का। आइए समाप्त करते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।
1: सामीनादाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर।

0: है 3:50 हुए हैं। खबरों के साथ मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी के लिए 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त को दी मंजूरी। श्री अमरनाथ जी यात्रा शद्दोमत से जारी, आज दोपहर 2 बजे तक तकरीबन 18,000 मजीद यात्रियों ने किए शिवलिंगम के दर्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नुनवन का दौरा, श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत का लिया जायजा। और वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे का रनवे बंद करने से मुतल्लिक मरकजी सरकार के मंसूबे को रोक दिए जाने पर किया इत्मीनान का इजहार। और अब खबरों की तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शद्दोमत से जारी है। यात्रियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 2 रोज के दौरान 32,313 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी और दर्शन किए, जिसमें 14,515 यात्रियों ने पहले दिन गुफा में हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। आज भी बालतल और नुनवन के बुनियादी कैंपों से कई हजार यात्री गुफा की तरफ महव सफर हैं, जबकि जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज मजीद 6,721 यात्री वादी के लिए रवाना हुए। इंतजामिया ने श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए सिक्योरिटी समेत सभी इंतजाम बहम रखे हैं। इस सिलसिले में यात्रियों ने न्यूज रूम के साथ बात करते हुए कहा,
1: हम महाराष्ट्र से आए, आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था मिली। खाना पीने की व्यवस्था बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो सेवेकरी है वो बहुत अच्छे लगे, बड़े प्यार से हमसे आए। और हम 6 यात्री है और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर।
2: मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली साथ। बालटाल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी, जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आपके सुविधा के कारण ही बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
0: ताज़ा इत्तला के मुताबिक आज दिन के 2 बजे तक मजीद 17,908 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने खसूसी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि गैर रजिस्टर शुदा किसी भी यात्री को सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रीनगर की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि श्रीनगर जाने वाले रजिस्टर्ड यात्रियों और सयाहों से कहा गया है कि वो पुलिस चेक प्वाइंटों पर कागजात की जाँच के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप और होटल बुकिंग रसीद साथ रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहलगाम के नुनवन में कायम श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया और वहां यात्रा की निजामत और श्रद्धालुओं के लिए दस्तियाब सहूलियत का जायजा लिया। इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग में उन्होंने यात्रियों की नकलो हमल, सलामती इंतजाम, अकामती सहूलियात, रजिस्ट्रेशन अमल और यात्रा से जुड़े दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के ऐसे इनका को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करने की हिदायत दी। LG ने कई यात्रियों के साथ बात करते हुए यात्रा से मुतालिक उनके मुशाहिदात के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा नलिन प्रभात ने तमाम मुतलिक एजेंसियों को यात्रियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए सभी अहम मुकाम, खास तौर पर कौमी शाहरा, यात्रा के रूटों और दूसरी जरूरी राहदारियों पर निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। वो पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में इस नस्बत से जरूरी सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे थे। मीटिंग में IGP कश्मीर और IGP जम्मू समेत दीगर सभी सीनियर पुलिस अहदेदारान और अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने यात्रियों की महफूज आवाजाही को यकीनी बनाने के सिलसिले में वजह करदा मयारी जवाबित के बारे में DGP को जरूरी जानकारी फराहम की। अदालत उज़्मा की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए जिन श्रद्धालुओं ने पेश की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपना इंदराज करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी के निफास के लिए पहली किस्त के तौर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की है। वजीर मौसूफ ने पहली किस्त की ये मंजूरी आज रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की देही तरक्की की वजारतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग के दौरान दी, जिसमें देही तरक्की की फ्लैगशिप देही रोजगार स्कीमों का जायजा लिया गया। काबिल जिक्र है कि मुल्क में VBG रामजी 1 जुलाई से अमल में लाई गई है, जो इससे पहले MG नरेगा के नाम से जानी जाती थी। वजीर ने कहा कि जहां मनरेगा स्कीम को मुल्क में लागू करने के लिए 3 साल का तवील अरसा लगा, वहां VBG रामजी मुल्क भर में सिर्फ एक ही दिन में लागू की गई, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अजम का अकास है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब

0: घर में एक साल दो साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे की रनवे बंद करने से मुतल्लिक मुजवजा मंसूबे को रद्द करने पर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में बिलाखलल हवाई रब्ता दस्तियाब रहेगा और हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों को राहत मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम, ताजरों और सयाहत से जुड़े अफराद के मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये मामला जाती तौर मरकज के साथ उठाया था। उन्होंने कहा कि सयाहती सीजन के दौरान हवाई रबते का बरकरार रहना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के नौजवान मसनूई जहानत, रोबोटिक्स और मुल्क में तैयार किए गए सेमी कंडक्टरों का इस्तेमाल करते हुए नई नस्ल की टेक्नोलॉजी में आलमी इनकलाब की क्यादत करेंगे। वजीर अजम गुजरात में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट यानी ओएसएटी की इफ्तिताही तकरीब पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर अजम ने कहा कि यह मौका और ये प्रोजेक्ट डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के जुड़वा सतूनों के जरिए भारत की को जदीद टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज बनाने के नजरिए में एक संगमेल की नुमाइंदगी करता है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई की नमाज़ जनाजा तहरान में अदा की गई है। नमाज़ जनाजा में लाखों लोगों ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में कई गैर मुल्की सरबराहान और आला सरकारी अहदेदारान भी शामिल थे। मगरबी एशिया तनाज़े के खात्मे और जंगबंदी के बाद आबनाई हुरमुज़ के रास्ते लिक्विफील नेचुरल गैस की तरसील दोबारा शुरू होने पर सरकार ने कुदरती गैस की फराहमी पर आयद हंगामी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत वो हंगामी दफात खत्म की गई हैं जिनके जरिए सरकार को मुल्क में पैदा होने वाली कुदरती गैस और दरामद शुदा LNG की तरजीही बुनियादों पर तकसीम और मुख्तस करने का इख्तियार हासिल है। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इक्तिसादी जराइम से मुतलिक विंग ने बैंक में लाखों रुपए फ्रॉड मामले में फर्द जुर्म दाखिल कर दी है। इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज में क्राइम ब्रांच ने कहा है कि ये चार्जशीट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में दाखिल की गई है जिसमें गलत तरीके से कर्जा हासिल करने की पादाश में कई अफराद के नाम दर्ज हैं। मालूम हुआ है कि कसूरवार अफराद ने जाली दस्तावेजात पेश करके साल 2007 में जम्मू कश्मीर बैंक की रेजिडेंसी रोड की शाख से 30 लाख रुपये का CC कर्जा और जैनाकोट शाख से मजीद 30 लाख रुपये का टर्म लोन हासिल किया था। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर जारी किए गए बच्चों के जिनसी इस्तेमाल और बदसलूकी के मवाद पर सख्त नोटिस जारी कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हिदायत दी है कि वो इस किस्म के तमाम इश्तिहारात और मवाद तक रसाई को फौरी तौर गैर फ़ाल बना दे। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 7 दिन के अंदर अहकामात पर अमल दरामद से मुतलिक तफसील तलब की है। आम लोगों की सहूलियत के लिए भारत की मुनफरिद शिनाख्ती अथॉरिटी ने आधार में ईमेल का इंदराज कराने की सहूलियत दस्तियाब कराई है। ख्वाहिशमंद अफराद ईमेल का इंदराज या अपडेट आधार ऐप के जरिए कर सकते हैं। ये सहूलियत 1 जुलाई को मुतारिफ की गई है और आइंदा 6 माह तक दस्तियाब रहेगी। NIT श्रीनगर की मेजबानी में कल से शुरू हुआ कुल हिंद बैन NIT क्रिकेट टूर्नामेंट का पहले मैच में NIT श्रीनगर की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके NIT मणिपुर को 10 विकेट से हरा दिया। कौमी सतह के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 24 टीमें शिरकत कर रही हैं जो कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के NIT से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। खुदा हाफिज।
2: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के ठीक 4 बज रहे हैं। समाप्त कीजिए आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

विकसित उड़ान स्कीम का आगाज 200 हेलीपैड बनाने का हदफ मुकर्र मौसर हिकमत अमली और दुरुस्त फैसलों की बदौलत हिंदुस्तान 21 सदी के सबसे बड़े तवानाई बुहरान थी निकल सकिया नए भारत के अजम और इसकी कोशिशों थी चिलंजा पर काबू किनिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे बंदिश का मनसूबा वापस किया गया फ्लाइट ऑपरेशन पूरे हफ्ते हुन जारी रहेगा रनवे की शबाना मरम्मत होगी और मरम्मती काम अक्तूबर 2026 तो जारी रहेगा समय ने एक खुशाइन कदम है और जितने भी सेहत नाल व्यवस्था लोग उन्होंने इसका खैर मकदम किया है सीएम उमर अब्दुल्ला सुन भी मरकज का शुक्रिया अदा किया फैसले थी फजाई राबते बिला तातल जारी रहेंगे अमरनाथ यात्रियों को मकामी बाजारों में जाने की इजाजत दी जुलै सीएम उमर अब्दुल्ला खरीदारी के जरिए मस्जिद को मजबूत बढ़ा सनगे समय नदरों महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर 6 जुलाई थी किनके 8 जुलाई तोड़ी बारिश और किरे किरे तेज हवा का इम्कान है वादी बिच कई हफ्तों से जारी मटन बुहरान टल गया पंजाब हुकूमत की मुदाखलत के बाद हड़ताल खत्म गड्डिया पर 4% टैक्स मनसूखी के बाद सप्लाई बहाल होने की उम्मीद सानू हुण दसण वाले इस हफ्ते शाह होने वाले रोजगार समाचार के बारे कुछ जानकारी साझी करा नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सैनिक स्कूल अंबिकापुर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कई सारे मुख्तलिफ महकमे सुन असामियां पूर किते वास्ते उम्मीदवारों को दरखास्तां तलब कीतियां दियां रोजगार के मुतमनी उम्मीदवारों को असीं आखते जुलां के मजीद जानकारी वास्ते www.employmentnews.gov.in पर लॉग इन करके मजीद जानकारी जी है वह हासिल कर सकते हैं सानू नस्ती पहाड़ी प्रोग्राम की आवाज जाई जाई और घर घर पहुंचती है अस्ते जेड़े कारोबारी प्राण और अगर अस्ते प्रोग्राम के जरिए अपने कारोबार को मजीद बढ़ावा देना चाहते हैं तो अस्ते कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाल इस नंबर पर रबता कायम कर सकते हैं नंबर है 9018074333 समय इस नंबर पर फोन करके वो मजीद जानकारी हासिल कर सकते हैं और अस्ते प्रोग्राम के जरिए अपने कारोबार को बढ़ावा दे सकते हैं समय नाल तुसा कुछ दसते जुलना के सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले बिच अज आला सुबह 6721 यात्रियों पर मुश्तमल चौथा काफिला जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास थी सख्त हफाजती इंतजाम के दरमियान बालताल और पहलगाम के बेस कंपा के जानवर रवाना होया हुकाम के मुताबिक बालताल जाने वाले काफिला 152 गड्डिया पर मुश्तमल आसा जिन्हें 50 बसा 12 मेटाडोरस और 90 लाइट मोटर व्हीकल्स शामिल हैं एक काफिला सुबह 3:15 भगवती नगर थी रवाना होया इस तरह पहलगाम जाने वाला काफिला जिस 139 गड्डिया शामिल आसियां सुबह 3:45 पर रवाना होया हुकाम सुन दस्या कि दोए काफिले पर यात्री बालतर और ननवर बेस कैंप पहुंचने के बाद मुकदस अमरनाथ गुफा की जानब रवाना हो सनगे ताकि दर्शन अंजाम दे सकन सालाना अमरनाथ यात्रा दौरान सिविल इंतजामिया पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जानब थी मरबूत और कसीर सती हिफाजती इंतजामात वास्ते किते गए दिन ताकि यात्रा को महफूज पुरअमन और खुश असलूबी नाल मुकम्मल किया जुले सामी नाव गया प्रोग्राम बिच तुसां दी नजर एक गीत कर दें आवाज है बरकत अली कुरेशी दी आओ सुनते हैं।

बरकत अली कुरैशी गीत पेश कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि गीत तुसां को पसंद आया उसी। सामिन इस प्रोग्राम के बारे भी राय तो मशवरे नाल भी असां को आगाह करते करो। तुसी असां को खत लिख सकते हो। उसका पता है इंचार्ज पहाड़ी प्रोग्राम मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर पिन कोड है 1900001। सामिन फिर इसते नाल ही इसते अज दे पहाड़ी प्रोग्राम का वेला भी मुक्या। अपने मेजबान इम्तियाज अहमद मीर ते पहाड़ी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मारूफ निसा को अगले प्रोग्राम तो दो इजाजत। खुश रहो। अल्लाह बिली।

ये आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 हो गए। पहाड़ी खबरनामा के इनके में जावेद मुगल। सब थी पहला पेश हैं खास खास खबरां दियां सुर्खियां। ग्राई तरकी दे वजीर शिवराज सिंह चौहान सुन वी बी जी राम जी वास्ते 5,000 करोड़।

रुपए की पहली किस्त को दी मंजूरी। श्री अमरनाथ जी यात्रा शदोमद नाल जारी। अज दोपहर के 2 बजे तोनी तकरीबन 18,000 मजीद यात्रियों सुनकी ते शिवलिंगम के दर्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नुनवन का दौरा। श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत का कैदा जायजा। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन श्रीनगर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे का रनवे बंद करने के हवाले थी मरकजी सरकार के मनसूबे को रद्द किए जुलने उत्ते किया इतमान का इजहार। हुण पेश है इन्हां ते दूईयां खबरां दी तफसील। ग्राई तरक्की दे मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान सुन मुल्क विच विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG राम जी दे नफाज वास्ते पहली किस्त दे तौर रियासतां और मरकज दे ज़ेर इंतजाम इलाकियां वास्ते 5,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त को मंजूरी दीती है। वजीर मौसूफ सुन पहली किस्त की यह मंजूरी अज रियासतां और मरकज दे ज़ेर इंतजाम इलाकियां दी

0: कश्मीर पहुंचन। एक सरकारी बयान विच बगैर रजिस्टर दे जम्मू व कश्मीर पहुंचे यात्रियों को अपनी वारी दा इंतजार करना और इंतजामिया दी तरफ मुकर्रर कीते गई तारीख उतै यात्रा शुरू करने दी ताकीद कीती गई है। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला सोन श्रीनगर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे दी रनवे बंद करने थी मुतलिक मजज़वा मनसूबे को रद्द करने उतै मरकजी सरकार दा शुक्रिया अदा कीता है। वज़ीर-ए-आला सोन आखिया जे इस फैसले थी जम्मू व कश्मीर बिच बगैर कसा खलल हवाई राबता दस्तयाब रहसी और हवाई सफर करने वाले मुसाफरों को राहत मिल सी। उमर अब्दुल्ला सुन आखे जे जम्मू कश्मीर दे लोकां ताजरां और सेहत नाल जुड़े नफरां दे मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सुन ए मामला जाती तौर उतै मरकज़ दे नाल चाया। उन्हें सुन आखे जे सेहती सीजन दे दौरान हवाई राबते दा बरकरार रहना जम्मू व कश्मीर दी मैशियत वास्ते अहमियत दा हामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आखिया जे नौजवान मसनवी जहानत रोबोटिक्स और मुल्क बिच तैयार किए गए सिमी कंडक्टरों का इस्तेमाल करदे हुए नवी नस्ल की टेक्नोलॉजी बिच आलमी इनकलाब की क्यादत कर सन। वज़ीर आज़म गुजरात बिच सीजी सिमी आउटसोर्स सिमी कंडक्टर असेंबली टेस्ट यानि OSAT की इफ्तताही तकरीब उतै इजहार ख्याल कर रहे से। वज़ीर आज़म सुन आखिया जे ए मौका और ए प्रोजेक्ट डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया दे दुआ सतूना दे जरिए भारत को नवी टेक्नोलॉजी दा आलमी मरकज बनाने दे नजरिए बिच एक संगे मेल दी नुमाइंदगी करदा है। ईरान दे साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई दी नमाज जनाजा तेहरान बिच अदा कीते गई। नमाज जनाजा बिच लखां लोकां सुन शिरकत कीती। शिरकत करने वालों में कई गैर मुल्की सरबराहान और उच्चे सरकारी अहदेदारान भी शामिल आसे। मगरबी एशिया तनाजे के खात्मे और जंगबंदी के बाद आबनाई हुरमुज़ की राती लिक्विफाइड नैचुरल गैस की तरसील दोबारा शुरू होने उतै सरकार सुन कुदरती गैस की फरहमी उतै लाई गई पाबंदियां खत्म कर छुड़िया हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की तरफ जारी एक बयान के मुताबिक आखे गए जे कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन आर्डर 2026 तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत वह हंगामी दफा खत्म किए गए हैं जिन्हें सरकार को मुल्क में पैदा होने वाली कुदरती गैस और दरामदशुदा LNG की तरजीही बुनियादों उतै बंडे और मुख्तस करने का इख्तियार हासिल है। क्राइम ब्रांच कश्मीर दी इक्तसादी जरायम थे मुतलिक विंग सुन बैंक विच लखां रुपए फ्राड विच फर्द जुर्म दाखिल कीती। इस हवाले थी एक प्रेस रिलीज विच क्राइम ब्रांच सुन आखिया जे चार्जशीट चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत विच दाखिल कीती गई है जिस विच धोखा दे के कर्जा हासिल करने की वजह थी कई नफरों के नाम दर्ज हैं। वाजरेव जे कसूरवार नफरा सुन नकली कागजात पेश करके साल 2007 बिच जम्मू कश्मीर बैंक दी रेजिडेंसी रोड दी शाख थी 3 लाख रुपए दा KCC कर्जा और जेनाकोट शाख थी 3 लाख रुपए दा टर्म लोन हासिल कीता सा। आम लोकां दी सहूलत वास्ते भारत दी मुनफरद शनाख्ती अथॉरिटी सुन आधार बिच ईमेल दर्ज कराने दी सहूलत दस्तयाब करा ली है। ख्वाहिशमंद नफर ईमेल दा अंदराज या अपडेट आधार ऐप दे जरिए कर सकते हैं। यह सहूलत 1 जुलाई को मुतारफ की गई है और आइंदा 6 महीने तोड़ी दस्तयाब रहसी। इस दिन ही यह खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन थी अगला खबरनामा 5:50 तक गोजरी जबान में नशर किया गया सी। देव इजाजत अल्लाह बेली।
1: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन 4:30 और 17 सेकंड हो चुके हैं। नश्र होता है पंजाबी प्रोग्राम।

प्रोग्राम सुनने वाले साथियों नूं सुजीत दा प्यार भरिया सति श्री अकाल। साथियों जिवें कि तुसी जानदे हो कि छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब अज सारी दुनिया विच धूमधाम नाल मनाया जा रहा है ते तुहानू वी गुरपुरब दियां लख लख वधाईयां। साथियों गुरु हरगोबिंद जी का जन्म 1595 अमृतसर के गुरु की बढ़ाली नाम के पिंड विच होया सी।

साथियों, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी संत सिपाही बनन दी प्रेरणा अक्सर देंदे सन। उन्हां ने दस्या से कि धर्म केवल माला जपना नहीं बल्कि अत्याचार दे खिलाफ तलवार चुकना भी है। अज दे इस आधुनिक ते उथल पुथल परे दौर विच गुरु हरगोबिंद जी ने जीवन मूल्य ते उन्हां द्वारा स्थापित सिद्धांत बेहद रोचक ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पंच सिद्धांत सन जिन्हां दे बारे असी गलबात करांगे। मीरी दी पीरी दी सिद्धांत गुरु हरगोबिंद जी ने सिख इतिहास विच सब तो वड्डा क्रांतिकारी बदलाव करदे होए मीरी दी पीरी दी तलवार धारण कीतियां। मीरी दी बारे उन्होंने सानू समझाया कि संसारिक राजनीतिक सैन्य शक्ति दा प्रतीक है जड़ी समाज दी रक्षा करती है। ते पीरी दे बारे श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सानू समझाया कि अध्यात्मिक शक्ति है ते गुरता दा प्रतीक है जड़ा आत्मा नू शुद्ध करता है। अज दे दौर विच सिद्धांत सानू सिखांदा है कि जीवन विच संतुलन बहुत ही जरूरी है। इंसान नू अंदरों शांत दयालु ते अध्यात्मिक होना चाहिदा है। समय आन ते अन्याय अत्याचार ते शोषण दे खिलाफ शारीरिक ते मानसिक रूप ते मजबूत होके डटन दी क्षमता बंदे विच होनी चाहिदी है। अकाल तख्त दा संदेश सी कि सच ते अन्याय किसी भी दुनियावी राजा ते सरकार ते अधीन नहीं है। अज दे समाज विच ए सिद्धांत सानू स्वतंत्र सोच रखण सच दा साथ देण ते किसी भी तरह दी तानाशाही या गलत व्यवस्था दे अगे झुकण दी प्रेरणा देंदा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सानू तीसरा सिद्धांत सिखाया सी कि संत सिपाही दा निर्माण किवें होना चाहिदा है ते कमजोरां दी रक्षा किवें होनी चाहिदी है। अपने पिता गुरु श्री अर्जुन देव जी दी शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद जी ने महसूस किया कि शांति ते क्रूर शासकां दा दिल नहीं बदला जा सकता। उन्होंने सिख्या नू शस्त्र विद्या घोड़सवारी ते आत्मरक्षा दे गुण सिखाए। गुरु जी ने सेना दा गठन किसी ते हमला करन या फिर समाजिक विस्तार दे ले नहीं बल्कि कमजोरां मजलूमां ते धर्म दी रक्षा लई कीता। अज दे समाज विच औरतां बच्चियां दे समाज दे पिछड़े वर्गां दी सुरक्षा दे लई आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस ते शारीरिक रूप तो सक्षम होना किन्ना जरूरी है ए गुरु जी ने संदेशां विच सानू दस्या।

अगर जी काबुल बुखारी की आवाज मां गीत सुनो वास्ते आमना एसएमएस करें हिंदवाड़ा चंगड़ी ते मंजूर बडाना और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए लाल दीन बडाना मोहम्मद आरिफ बडाना मोहम्मद इकबाल बडाना मोहम्मद रफीक बडाना रेशमा बानो इरफत जान ते फरीदा बानो चीरा मंडी कुपाड़ा ते हैदर बानिया आयमन हैदर मुदस्सर मुस्तफ़ा गुलाम जिलानी हमाद हैदर ते आहिल खान टोक डन्ना पथरी ते महामंद शरीफ खटाना

है फरीदा बानो, जीरा मंडी कुपाड़ा ते हैदर बानिया, आयमन हैदर, मुदस्सर मुस्तफा, गुलाम जिलानी, हमाद हैदर ते आहिल खान। टोक डन्ना पथरी ते महामंद शरीफ खटाना, राजा इम्तियाज खटाना, एजाज खटाना, सजाद खटाना, शहराज खटाना, जरीना बानो ते नाजिया जान। गोंडकू ते इम्तियाज अहमद चेची, शमीम अहमद चेची, सदाकत अहमद चेची, दानिश अहमद चेची ते शमीमा अख्तर। हिलपति हकनाड़ ते लतीफ अहमद ठिकरी, मंजूर अहमद ठिकरी, महामंद इमरान ठिकरी, हफीजा बानो, रिजवान अहमद ठिकरी ते फैजान अहमद ठिकरी। सुरफराव ते रियाज अहमद बजाड़, नजीर अहमद बजाड़, फैजान ते असमा जान। टंगडार करना ते परवेज इकबाल लोन, आशिक अहमद लोन, मीर काजम, साजिद महमूद, अमजद इस्माइल लोन, हमाद इफ्तिखार लोन, महामंद अदील लोन ते इनका बाकी संगी साथी। तम सारा दोस्तों की पसंद पर काबुल बुखारी की आवाज़ में पेश है युग गीत।

0: जान तड़फे, एक बार दे जा वीर वे।
1: जी हाँ सामीन, तामने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन, और इस वक्त तम सुन रहे हैं थारो अपना प्रोग्राम मनपसंद गोजरी प्रोग्राम, अपना मेज़बान शौकत बोकड़ा के संग। तमने दस्तो चलूँ कि आज का प्रोग्राम में मारे को वक्त घट बचे हुआ है, जिसकी वजह से थारी आज की आई वी SMS आज का प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकता। आज जितनी भी SMS मारे को पहुंची हैं, ये SMS अगला अतार ना सबसे पहला पेश की जाएगी। इसके नाल नाल तमना भी दस्तो चलूँ कि अगर तम भी इस प्रोग्राम में हमारे संग जुड़ना चाहे तो तम हमना 9596012521 इस नंबर पर SMS या फिर व्हाट्सएप करके अपना फरमाइशी ना ते अपनी पसंद मारे तक पहुँचा सकें। प्रोग्राम का आखिर पर जी थारे वास्ते आरफ मंजूर की आवाज़ में गीत पेश करा का। इस गीत ना सुनो वास्ते आमना SMS करें वाल्टिंगू नाड़ काजीगुंड ते मास्टर महामंद हशमत दे दड़ोर, ते इनके नाल बाकी फरमाशी नाई हाजरा बानो

त्यसकै नाल ही आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुके लगो। गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेजबान शौकत अहमद बोकड़ाना। अगली मुलाकात रे दियो इजाजत। अच्छा जी, रब राखो।

0: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: सालाना श्री अमरनाथ यात्रा तेजी नाल जारी है। यात्रियों की तादाद में हर गुजरते दिहाड़े वाधो हो रहे है। पिछला 2 दिन के दौरान 32,313 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी ते दर्शन किया, जिसमें 14,515 यात्रियों ने पहले दिहाड़े गुफा में हाजिरी दी ते शिवलिंगों का दर्शन किया। आज भी बालताल ते नंदन का बुनियादी कंपन तो कई हजार यात्री गुफा का टूर रहे हैं, जबकि जम्मू का भगवती नगर यात्री निवास तो आज मजीद 6,721 यात्री वादी वास्ते रवाना होया। इंतजामिया ने श्रद्धालुओं की सहूलत वास्ते सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम रखे है। इस सिलसिला में यात्रियों ने न्यूज रूम के नाल गल करता वक्यू।
2: हम महाराष्ट्र से आए, आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था मिली, खाना पीना की व्यवस्था बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और यहाँ पर जो सेवेकरी है वो बहुत अच्छे लगे, बड़े प्यार से हमसे आए, और हम 6 यात्री हैं और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा है, और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर।
3: मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली साथ। बालताल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, अच्छी सुविधा थी, जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं, आपके सुविधा के कारण ही बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
1: ताजा इतला के मुताबिक आज दिहाड़ी के 2 बजे तक मजीद 17,908 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक खसूसी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस गल की वजाहत की गई है कि गैर रजिस्टर्ड शुदा किसी भी यात्री ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा वास्ते श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा सकी, जबकि श्रीनगर जाने वाला रजिस्टर्ड यात्रियों ते सैलानियों ने क्यों गए है जे वे पुलिस चेक पॉइंटों पर कागजों की जाँच वास्ते यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप ते होटल बुकिंग रसीद साथ रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहलगाम का नंदन में कायम श्री अमरनाथ जी यात्रा का बेस कैंप को दौरा कियो ते उस यात्रा का इंतजाम और श्रद्धालुओं वास्ते दस्तयाब सहूलतों को जायजा लियो। इंतजामिया का अफसरों के नाल एक मीटिंग में उन्होंने यात्रियों की टोरा फेरी, सलामती इंतजाम, अकामती सहूलियात, रजिस्ट्रेशन अमल ते यात्रा नाल जुड़िया दूजा अमूर को तफसीली जायजा लियो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चंदनवाड़ी को भी दौरों कियो ते उत भी यात्रा का बेहतर इनकाद वास्ते किया गया इंतजामों को जायजा लियो। उन्होंने यात्रा का बेहतर इनकाद न यकीनी बनाने वास्ते तमाम इकदाम करने की हिदायत दी थी। LG ने कई यात्रियों के नाल गल करते हुए यात्रा बारे उन तू जानकारी हासिल की, बाद में मीडिया नुमाइंदा नाल गल करते हुए उन्होंने कहा।
4: चार यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है, इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई, बिना पंजीकरण कराए बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्राइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो चंदनबाड़ी से भी और बालताल से श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो मेरा आग्रह होगा कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उस व्यवस्था का सब लोग पालन करें।
1: वज़ीर आला अमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर बैन अल-अक़वामी अड्डा की रनवे बंद करने बारे मनसूबा न रद्द करने पर मरकजी सरकार को शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि इस फैसले नाल जम्मू कश्मीर में बिला खलल हवाई राबतो दस्तयाब रहेगो ते हवाई सफर करने आला मुसाफरा न राहत मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ताजर ते सैल सफा नाल जुड़िया बंदा का मुफाद न मद्देनजर रखता हुआ उन्होंने यो मामलों जाती तौर पर मरकज के नाल चाहे थो। उन्होंने कहो जे सियाती सीजन के दौरान हवाई राबता को बरकरार रहने जम्मू कश्मीर की माशियत वास्ते अहमियत को हामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहो है जे भारत का नौजवान मसनूई जहानत रोबोटिक्स ते मुल्क में तैयार किया गया सीमिक कंडक्टरों को इस्तेमाल करता हुआ नवी नस्ल की टेक्नोलॉजी में आलमी इनकलाब की क्यादत करेगा। वज़ीर आज़म गुजरात

समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए

0: आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन समीन शामनिच शबजित 5 मिनट 18 सेकंड सफेद पेश प्रोग्राम गमी बायन दी खतरे।

0: и Сринагар. अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हा?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 9018074333।
3: 9018074333।
4: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
5: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
6: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
7: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
6: अच्छा भाभी,
7: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो, और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
6: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
8: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
10: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
9: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
10: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर।
11: शहर भी आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अनंतनाग के नुनमन बेस कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ यात्रा के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर हुकाम के साथ यात्रियों की नकलो हरकत, सिक्योरिटी, रिहायश, रजिस्ट्रेशन और दिगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और हिदायत दी कि यात्रियों की हिफाजत, सहूलत और सफर को आसान बनाने को अवलीन तरजीह दी जाए। एलजी मौसूफ ने कहा कि इस साल यात्रियों की बड़ी तादाद वादी आ रही है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने मुनासिब इंतजाम किए हुए हैं। उन्होंने यात्रियों पर जोर दिया कि वह मुकर्रर तारीखों के साथ दुरुस्त रजिस्ट्रेशन करवा के ही यात्रा करें ताकि गैर जरूरी इंतजार से बचा जा सके। उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के आने वाले यात्रियों से सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील की और यकीन दिलाया कि तमाम मुतल्लिका महकमे महफूज, मुनज्जम और पुरसकून यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। इधर आज यात्रा के तीसरे दिन 14,000 से ज्यादा यात्रियों ने बालतल के रास्ते यात्रा शुरू की। वाजिर है कि यात्रा के पूरे रूट पर यात्रियों की सहूलत के लिए तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिनमें बतौर खास तिब्बी सहूलियात, लंगर और बैतुल खुला की सहूलियात शामिल हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान।
12: श्री अमरनाथ जी यात्रा तीसरे रोज बालतल रूट से बड़ी खुश असलूबी से जारी है। गुज़श्ता रात 2 बजे से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में दुमेल कंट्रोल गेट पर बेसब्री से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस बीच आज 14,257 यात्रियों को बालतल बेस कैंप से गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया। वाजा रहे 10 बजे तक दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन यात्रियों में 11,291 मर्द, 2,467 खवातीन, 1,045 लड़के और लड़कियां, 33 साधु, 31 साधियां और 290 सिक्योरिटी अहलकार थे। वाजा रहे सतह समंदर से 3,888 मीटर यानी 12,756 फुट ऊंचाई पर वाका बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए यात्रियों को बालतल रूट से ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का मुश्किल तरीन सफर तय करना पड़ता है, जहां अक्सर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तहम यात्रियों को बहिफाजत गुफा तक पहुंचाने के लिए जिला इंतजामिया गांधरबल, खासकर महकमा सेहत ने खातिर खा इंतजाम किए हैं और यात्रा रूट के हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन के साथ साथ दीगर सहूलियात भी वाफिर

0: आर देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
2: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहने। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
4: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। PDF के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने समाज के मुख्तलिफ तबकों की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच मुजाकरात को दोबारा शुरू किए जाने के मुतालबात का खैर मकदम किया है। अपने एक बयान में हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आबादी की अक्सरियत अमन चाहती है और अपने बच्चों के लिए एक महफूज और शानदार मुस्तकबिल, लिहाजा वो लोग जो इस सिलसिले में कश्मीर में सेमिनार और वर्कशॉप मुनक्किद करते हैं उन्हें दिल्ली में भी ऐसी काविशें करनी चाहिए ताकि पॉलिसी साजों तक उनकी बात पहुंच सके। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने आज आरीगाम खान साहब में पार्टी वर्करों की एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर खान साहब हल्के इंतखाब से जुड़े मुख्तलिफ तरक्याती मामलात जेरे गौर आए। अलावाजी सैफुद्दीन भट्ट ने खान साहब हल्के इंतखाब के बिलखसूस और बड़गाम जिले के बिलमूम तमाम सियासी लीडरान और सिविल सोसाइटी अरकान को दिल्ली चलो प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी, जिसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले रोज जंत्र मंत्र नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाज करने वाली है। इधर PDP के जिले कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक ने सरकार से मुतालबा किया है कि रफियाबाद, जैनगीर और मुलिक इलाकाजात में जालेबारी के बाइस जो नुकसान मालिकान बागात को झेलना पड़ा है उसकी भरपाई के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं। अलावाजी उन्होंने MIS को दोबारा मुतारिफ किए जाने के साथ साथ किसानों के KCC कर्जे माफ किए जाने और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू किए जाने की पुरजोर मांग की है। दरअसल PDP के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि चक रामदास खाग इलाका पीने के पानी की सप्लाई से महरूम है, जिसके बाइस मकामी आबादी को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंजूर अहमद वानी जल शक्ति महकमे के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि चक रामदास खाग में फिलफौर टैंकर सर्विस बहाल की जाए। सेमिनार सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज का प्रकाश पर्व अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावारी में मुनक्किद हुई, जहां आज सवेरे से ही अकीदतमंदों की आमद शुरू हुई। गुरुद्वारे में लंगर का इहतमाम भी किया गया था। वाजिर है कि गुरुपर्व के मौके पर आज स्वर्ण मंदिर अमृतसर से आए रागियों ने भी शब्द पेश किए।

0: क्वार्टर से मात्र 14 किलोमीटर मागाम सोईबुक बडगाम रूट पर वाका चुवा में गुजस्ता कई वर्षों से लगातार पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के बाइस इलाके की वसी आबादी को दौरे जदीद में तरह तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक पीने के पानी की अदम मौजूदगी के सबब लोग नदी नालों का नासा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, जिसके बाइस लोगों को कई तरह की बीमारियां फटने का खर्चा लाग हो गया है। यहां तक कि चुवा और चक के लोगों ने गुजशत रोज बडगाम मागाम रूट पर जल शक्ति के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज भी किया था और मुतालबा किया था कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाए, ताम अभी तक इस मामले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उधर बीरवा डिवीजन के तुरमुजरू हकलेत्री गोंदीपुरा सयामा बोनेट और बपट के इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके नतीजे में लोगों को गर्मी के अयाम में जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोनेट के लोगों ने कहा कि सूरत हाल रोज बरोज तश्वीशनाक होती जा रही है, खासतौर पर बच्चों बुजुर्गों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए यह मसला ज्यादा संगीन नवियत इख्तियार कर चुका है। इलाके के लोगों ने कहा कि साफ और महफूज पीने का पानी हर शहरी का बुनियादी हक है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आवाम को मजा पानी की फराहमी यकीनी बनाए। उधर पखरपुरा और मुलिका इलाकों में पानी की फराहमी के निजाम की तबाहाली और गंदा पानी की सप्लाई यकीनन एक इंतहाई तश्वीशनाक सूरत हाल बन चुका है। बाकुली लोग 25,000 से ज्यादा आबादी का इंसार एक ऐसे प्लांट पर होना जो अपनी इफादियत खो चुका है, जो की अवामी सेहत के लिए एक संगीन खतरा है। पखरपुरा समेत डलवन, फुटलीपुरा, शंकरपुरा, कारीपुरा और चकशेरू की 25,000 से ज्यादा मकीनों को गंदा पानी की फराहमी की वजह से जबरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बाकुली लोग कई दर्जन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मुकम्मल लाकरा होने के बाइस लोगों को पीने के लिए आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है, जिससे हेपेटाइटिस मालिक बीमारियों के लिए फैलने का खर्चा बढ़ गया है। उधर सब डिवीजन चाडोरा और खानसाब के मुतजद गांवों देहात के लोगों को भी कई वर्षों से नासा पानी की किल्लत से वो जूझ रहे हैं और पीने के पानी की किल्लत के बाइस वो जहनी कोफ्त के शिकार हो गए हैं। लोगों के मुताबिक महकमा जल शक्ति लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने में लहतलहल का मुजाहरा कर रहे हैं। दरियासना, रिंग जबल, पालपुरा, मलपुरा, संजीपुरा, रड़बुक, त्रापई और हाजुरा के लोगों का मानना है की गर्मियों के अयाम में रोजमर्रा जिंदगी में जो बाज बुनियादी मसाइल दरपेश है उनमें पीने के पानी की किल्लत भी शामिल है, जो की दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि बेशतर आबादी पीने के पानी की किल्लत के बाइस नदी नालों का गड़ला नासाफ और मुजर सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग ट्यूबवेल का बगैर टेस्ट शुदा पानी से अपनी जरूरियात पूरा कर रहे हैं, जिससे उन्हें मुख्तलिफ बीमारी में मुबतला होने का खर्चा लाग रहता है। इसी दौरान नवहार, आवनपुरा, चाडोरा और इसे मुलिका इलाके के लोगों का कहना है कि एक तरफ हुकूमत तामीर तरक्की के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि हम लोगों को सहूलियात पहुंचाने की गर्ज से पुरजम है, लेकिन दूसरी जानब नवहार और आवनपुरा जैसे दही इलाकों में हुकूमत के दावे शराब साबित हो रहे हैं। लोगों ने इस हवाले से मुतलिका हुकाम से पुरजोर अपील की कि वो मजकूरा जगहों की आबादी के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मवसर इकदाम उठाया जाए ताकि लोगों की मुश्किल दूर हो सके।
1: बड़गाम से यूनिस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर त्राल से शब्बीर भट्ट की इतला है कि आज कांग्रेस की तरफ से त्राल के अमीराबाद, नौपुरा और कदरबल इलाकों में शमूलियती मुहिम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दर्जनों अफराद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी में शामिल होने वाले नए अफराद का पार्टी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने खैर मकदम किया। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की तलाक आज डूल किश्तवाड़ रोड पर एक इको गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुआ। जख्मी होने वाले शख्स को बेहतर इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया है। इसी दौरान डेडपट के करीब एक मोटरसाइकिल को हादसा पेश आया। इस हादसे में दो अफराद जख्मी हुए, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، فون نمبر 9419000255۔
4: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، بس نام ہی کافی ہے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔

0: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स, पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
1: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
2: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
3: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
7: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
8: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहां काम नहीं करते। यात्री बालटाल, लुनवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
7: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा
3: लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।

0: पांच साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: सालाना श्री अमरनाथ यात्रा शुद्धमत से जारी है। यात्रियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आज यात्रा के तीसरे दिन शाम 7 बजे तक 24,648 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। ये यात्रा के पहले 3 दिनों के दौरान एक दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह अब तक दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद तकरीबन 56,000 हो गई है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज सुबह 6,721 यात्री वादी के लिए रवाना हुए। इंतजामिया ने श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए सिक्योरिटी समेत सभी इंतजाम बहम रखे हैं। इस सिलसिले में यात्रियों ने न्यूज रूम के साथ बात करते हुए कहा,
2: हम महाराष्ट्र से आए, आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था मिली। खाना पीना की व्यवस्था बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो सेवेकरी है वो बहुत अच्छे लगे, बड़े प्यार से हमसे आए। और हम 6 यात्री है और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर।
3: मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली साथ। बालताल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी, जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आपके सुविधा के कारण ही बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
1: इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने खसूसी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि गैर रजिस्टर शुदा किसी भी यात्री को सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रीनगर की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि श्रीनगर जाने वाले रजिस्टर्ड यात्रियों और सयाहों से कहा गया है कि वो पुलिस चेक प्वाइंटों पर कागजात की जाँच के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप और होटल बुकिंग रसीद साथ रखें। उधर पुलिस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है, ताकि यात्रियों की महफूज नकल व हमल को यकीनी बनाया जा सके। श्रीनगर पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मुनासिब इंतजाम किए हैं। जिले में यात्रियों की रास्तों पर पुलिस एहलकारों की मुनासिब तादाद को तैनात कर दिया गया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया और वहां यात्रा की निजामत और श्रद्धालुओं के लिए दस्तियाब सहूलियत का जायजा लिया। इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग में उन्होंने यात्रियों की नकल हमल, सलामती इंतजाम, अकामती सहूलियत, रजिस्ट्रेशन, अमल और यात्रा से जुड़े दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चंदनवाड़ी का भी दौरा किया और वहां भी यात्रा के एहसन इनाकात के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के एहसन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करने की हिदायत दी। LG ने कई यात्रियों के साथ बात करते हुए यात्रा से मुतालिक उनके मुशाहिदात के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
4: पिछले 4 यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई, बिना पंजीकरण कराए बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्राइन बोर्ड में मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो चंदनबाड़ी से भी और बालताल से श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो मेरा आग्रह होगा कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उस व्यवस्था का सब लोग पालन करें।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के नौजवान मसनूई जहानत, रोबोटिक्स और मुल्क में तैयार किए गए सेमीकंडक्टरों का इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी में आलमी इनकलाब की कयादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट यानी OSAT की इफ्तिताही तकरीब पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मौका और ये प्रोजेक्ट डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के 2 सतूनों के जरिए भारत को जदीद टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज बनाने के नजरिए में एक संगमेल की नुमाइंदगी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवियत मिलने और इश्तराक के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉ HJ शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार की सिफारिश पर सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मानसून इजलास के इनेकाद की मंजूरी दी है। वादी के सयाती मुकामात पर इन दिनों लोगों का गैर मामूली रश देखा जा रहा है। گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی ملکی اور غیر ملکی سیلانیوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی بڑی تعداد میں گلمرگ، کوکرناگ

0: ने दुख का इजहार किया है। A.R. आजाद मेमोरियल फाउंडेशन ने उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए मरहूम के लवाहकीन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मगरबी एशिया में तनाज़े के खात्मे और जंगबंदी के बाद आब नए हुरमुज के रास्ते लिक्विफील्ड नेचुरल गैस की तरसील दोबारा शुरू होने पर सरकार ने कुदरती गैस की फराहमी पर आयद हंगामी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत वो हंगामी दफात खत्म की गई है जिनके जरिए सरकार को मुल्क में पैदा होने वाली कुदरती गैस और तरामदशुदा LNG की तरजीही बुनियादों पर तकसीम और मुख्तस करने का इख्तियार हासिल है। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर जारी किए जा रहे बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और बदसलूकी के मवाद पर मीठा को सख्त नोट्स जारी कर दिया है। सरकारी जराए के मुताबिक हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हिदायत दी है कि वो इस किस्म के तमाम इश्तहारात और मवाद तक रसाई को फौरी तौर गैर फ़ाल बना दे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 7 दिन के अंदर अहकाम पर अमल दरामद से मुतलिक तफसील तलब की है। खवातीन की ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार 6 कामयाबी हासिल की थी। और अब खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नज़र। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और जम्मू सूबे के अक्सर मुकामात पर दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:25 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। उसके साथ ही खबरनामा खत्म हो। खुदा हाफिज।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं मुबशिर रुफाई। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक मजहबी सफर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तहजीबी हम आहंगी, कौमी यकजहती, बाहमी एहतराम और खिदमत खलक की रोशन रिवायत का एक मौसर मजहर है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन की गरज से दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों का सफर तय करते हैं और श्रद्धा, ईसार और रूहानी वाबस्तगी का अमली सबूत पेश करते हैं। इस साल यात्रा के आगाज के मौके पर यात्रियों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खसूसी पैगाम तकसीम किया जाना इस अमर की अक्कासी करता है कि हुकूमत इस अजीम मजहबी इज्तिमा को न सिर्फ एक रूहानी तकरीब बल्कि कौमी यकजहती, सकाफती हम आहंगी और अवामी शमूलियत के एक अहम मौके के तौर पर भी देखती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में श्री अमरनाथ जी यात्रा को हिंदुस्तान के रूहानी वरसे और कसरत में वहदत की जिंदा मिसाल करार दिया है। हकीकत भी यही है कि इस यात्रा में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, जबानों, सकाफतों और रिवायात से ताल्लुक रखने वाले श्रद्धालु शरीक होते हैं। ये इज्तिमा इस हकीकत को मजीद मुस्तहकम करता है कि हिंदुस्तान की असल ताकत इसकी गुनागुन सकाफतों के बाहमी एहतराम और कौमी यकजहती में मुजमिर है। वजीर आजम ने अपने पैगाम में सिर्फ मजहबी पहलुओं पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि यात्रियों को जिम्मेदार शहरी होने का एहसास भी दिलाया है। सफाई, माहौलियाती तहफ्फुज़, हिफाजती असूलों की पाबंदी और मकामी मईशत की हिमायत की तामीर में फाल किरदार जैसे निकात इस बात की निशानदेही करते हैं कि मजहबी सरगर्मियाँ समाजी जिम्मेदारियों से अलग नहीं है। खसूसन वोकल फॉर लोकल के जज्बे के तहत यात्रियों से अखराजात का कम अज कम 10% मकामी मसनूआत की खरीदारी पर खर्च करने की अपील एक मस्बत और दूर रस सोच की अक्कास है जिससे मकामी दस्तकारों, ताजरों और छोटे कारोबारी तबके को बराह रास्त फायदा पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर की मईशत में आम सियाहत और मजहबी सियाहत को हमेशा एक अहम मकाम हासिल रहा है। यही वजह है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात पर जोर दिया है कि यात्रियों को मकामी बाजारों और दीगर मकाम का दौरा करने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि वो मकामी अशिया खरीद सकें और इस तरह कश्मीर की मईशत को मजीद तकवीत हासिल हो। उनका ये मौकिफ वजीर आजम की अपील से मुकम्मल तौर हम आहंग है। ये हकीकत काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने हमेशा अमरनाथ यात्रा के दौरान अपनी रिवायती मेहमान नवाजी का शानदार मुजाहिरा किया है। मुख्तलिफ इलाकों में मकामी बाशिंदे जरूरी सहूलियात फराहम فراہم کر کے بے لوث خدمت کی مثال قائم کرتے

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। सामीन, बात हम कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। अब ये खबर कि पाकिस्तान के साहिली शहर कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मासूम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। इत्तला के मुताबिक शहर के कायद इलाके से पुलिस ने 38 अफगान शहरियों को धर लिया है। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर बेगुनाह अफगान शहरियों को दर दबोचने की मुहिम तेज कर दी है। अफगान शहरियों का कहना है कि वो काफी अरसे से यहां रिहाइश पजीर हैं और पुरअमन तरीके से मेहनत मशक्कत करके रोजी रोटी कमा रहे हैं और उनका किसी भी तकरीबी कार्रवाई में कोई हाथ नहीं और हुकूमत उनको बेवजह परेशान कर रही है, जबकि उनके पास जरूरी दस्तावेजात भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मौसूला इतलात के मुताबिक ताज़ा तरीन

कार्रवाई के दौरान 38 अफगान को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद उन्हें अफगान कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची के पुलिस तर्जमान ने कहा है कि पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई के दौरान शहर में मुकीम 20 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर उन्हें जाब्ते की कार्रवाई के तहत अफगान कैंप में मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब साइट सुपर हाईवे के सनती एरिया की पुलिस ने अफगान बाशिंदों के खिलाफ अपना क्रैकडाउन का अमल जारी रखा हुआ है। इस हवाले से डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस सोहराब गोठा औरंगजेब ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर गैर कानूनी तरीके से मुकीम 15 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ जाब्ते की कार्रवाई शुरू की है। उनका कहना था कि इन तमाम 15 अफगान शहरियों को अफगान कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। सामिन पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफगानी शहरियों को अफगान कैंप में तैनाती अमला मजीद कानूनी कार्रवाई करके उनको वापस अफगानिस्तान भेजने के अमल को तेज करेगी। इधर कानूनी तरीके से कराची शहर में बरसों से मुकीम अफगानी शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि उनके पास अकामत के तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद हुकूमत उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगी माहौल जारी है, जिसके नतीजे में इंतकाम लेने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बेगुनाह अफगान तारिकीन वतन को निशाना बना रहे हैं। इधर पाक अफगान सरहद पर कशीदगी जारी है। अफगानी फौज का दावा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हदूद के अंदर बड़ी तादाद में सिविल ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एक बड़ी तादाद में सिविलियन आबादी का जानी और माली नुकसान हुआ है। सामिन अफगानी फौज ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाइयों के दौरान पाकिस्तान के कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें दुश्मन का काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान खबर है सामेन कि अफगान फौज ने पाक अफगान की सरहद पर तैनात पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है, जबकि दीगर मुकामात पर हमला करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तानी फौज ने इस तरह के हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि पाक फौज ने बलूचिस्तान सरहद के नजदीक अफगान तालिबान की तरफ से भेजे गए 4 ड्रोन कामयाबी से तबाह कर दिए हैं। सामिन पाकिस्तान की फौज के शोबे तालुकाती आमा ISPR ने इन ड्रोन हमलों को इश्तेआल अंगेजी से ताबीर करते हुए अफगानिस्तान को इस तरह के हमलों से बाज रहने के लिए कहा है। सामिन यहां पर हम अपनी बातचीत के सिलसिले को वक्फा देते हुए समाप्त करते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज, और बात हम कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, जहां हमारा हमसाय मुल्क माशी और इक्तसादी बदहाली के लिए अक्सर खबरों में रहता है, वहां पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शोबा नहीं जो करप्शन और बदउनवानी से पाक है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB में बड़े पैमाने की बदउनवानियां और बेजाबतगियां मंजर आम पर आई हैं, और PCB का 15 साल से अकाउंट्स ऑडिट न होने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP ने अपनी सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात में मुतद्दिद किस्म की संगीन बेजाबतगियों की निशानदेही की है। रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने माली साल 2009-10 से 2024-25 तक मालियाती गोशवारे तैयार ही नहीं किए हैं, और ना ही PCB ने ट्रेजरी सिंगल अकाउंट कवानीन पर अमल दरामद की है। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 की शिक के तहत तमाम सरकारी रकूम को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट यानी जमा रखना लाजमी है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक अलग अकाउंट में ये रकूमात ट्रांसफर किए और ये अकाउंट ताहाल बरकरार है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2025 तक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के बैंक अकाउंट में 3.25 करोड़ रुपए मौजूद थे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट ने अवामी हलकों, खासकर खेल से वाबस्ता हलकों में हलचल मचा दी है, जो काफी अरसे से बोर्ड में जारी बेजाबतगियों और बदउनवानी और उकरबा परवरी पर नाला है। इन हलकों का इल्जाम है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल पजीर होने की बुनियादी वजह और जिम्मेदार यहाँ का क्रिकेट बोर्ड है, जो न सिर्फ बे इंतहा फंड्स पर मौज मस्ती कर रहा है बल्कि सिलेक्शन प्रोसेस में भी नुमाया खामियां मौजूद हैं, और खिलाड़ियों का इंतखाब अक्सर कारकर्दगी पर नहीं बल्कि फेवरेटिज्म की बुनियाद पर होता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी क्रिकेट रोज बरोज जवाल की तरफ जा रहा है और बैन अलाक्वामी मुकाबलों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शर्मनाक हार का सामना रहता है। हाल ही में ख्वातीन के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के इंतखाबात में बड़े पैमाने की बेजाबतगियों के इल्जाम सामने आए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की ख्वातीन क्रिकेट टीम को शर्मनाक हार का सामना रहा। इस हवाले से सोशल मीडिया पर खेल

0: 8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: आपने ट्यून किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। 8:30 हो चुके हैं, आइए चंद फिल्मी नगमे समाप्त करते हैं। समीन आगाज में सुनते हैं फिल्म निकाह से नगमा, सलमा आगा की आवाज में। गीत लिखा है हसरत मोहानी ने और संगीत से तरतीब दिया है रवि ने।

समीन फिल्मी लग में इस वक्त आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। लीजिए सुनते फिल्म दो कलियां से एक और नगमा। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत रवि का।

सेमिनार बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा, जरा सा इंतजार फरमाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माही और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव

0: दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रूपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यूकेएमटीओ ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती

0: टोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच

0: भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 9 बज चुके हैं। सनी ने चंद फिल्मी नगमे समाप्त करते हैं। आगाज में पीछे लता मंगेशकर की आवाज में नगमा, इसे हमने फिल्म नसीब से लिया है।

समीन फिल्मी नगमे इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए सुनते हैं आखिर पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में मजरूह का लिखा नगमा फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: समीन फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे थे। आपने ट्यून किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव के अलावा एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नशर होगा, जरा सा इंतजार फरमाएं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोज़ा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर अजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेज़ी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज़्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहाँ बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ ज़िले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नज़दीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर ज़खायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुरला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। BMC ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुज़वी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से परवाज़ों के आने जाने में भी काफ़ी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कोंकण ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। IMD अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली NCR के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी

0: वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तमीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये ज़िला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तसव्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिज़ाइल भारतीय फ़ौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ़ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनक़दा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहीं अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनेसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखाह फंड्स मौजूद हों, ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी, ताकि विकसित भारत के तसव्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।

हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तिहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटेरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोख देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोस की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी।

0: इसलिए कश्मीरी बहुत पुरानी जुबान बन जाती है, क्योंकि कश्मीरी लोग बहुत पुराने हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो जो एक वो हिस्ट्री है ना, वो भी तलाश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, वही
0: क्योंकि दूसरी जो जुबानें हैं ना
1: जी,
0: अपनी वो हिस्ट्री तलाश कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसे पंजाबी है,
1: बिल्कुल,
0: पहले हम पंजाबी के बारे में कहते थे ये अदब 7वीं सदी के आसपास आया, जब अपभ्रंशें आई
1: जी।
0: अब हम कहते हैं कि पंजाबी वो लोग हैं जिन्हों जिन जब तहजीब शुरू हुई
1: जी,
0: उस वक्त से है, तो वो जो भी बोलते थे वो पंजाबी जबान थी।
1: अच्छा, बिल्कुल।
0: इसीलिए हम जो ऋग्वेद है
1: जी,
0: ऋग्वेद उस संस्कृत में नहीं है, जो संस्कृत जिसको हम कहते हैं।
1: अच्छा।
0: अब हम कहने लगे हैं कि ऋग्वेद पुरानी पंजाबी में है।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे ही जो कश्मीरी जुबान है
1: जी,
0: कश्मीरी लोग जब भी थे वो जो जुबान बोलते थे वो कश्मीरी थी, क्योंकि उनकी जुबान थी।
1: बिल्कुल।
0: वो तलाशना होगा।
1: बिल्कुल। नहीं, ये रिसर्च का काम है, और इसमें भी साहित्य एकेडमी काफी मदद कर सकती है। स्टेट एकेडमी भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक इंस्टिंक्ट है कि हर कोई आदमी अपने रूट्स तलाश करता है। अच्छा, साहित्यकार को तो ये ज्यादा ही जहन में होता है कि मेरे रूट्स कहाँ है। जब वो अपने रूट्स तलाशने लगता है तो वो लाजमन इतिहास के उन पन्नों की तरफ जाता है जिन तक उनकी नजर पहुंचती है। तो इसमें भी साहित्य एकेडमी मदद कर सकती है,
0: सेमिनार मदद करेगी।
1: ये जो हम कह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से कश्मीरी राइटर उनको बुलाया जाए, तो उस तरह से एक डिलिब्रेशन होगी और एक सेमिनार होगा जिसमें सेमिनार में पेपर्स पड़ेंगे, जिन पे ये बातें की जाएंगी।
2: साहित्य एकेडमी छापती है
1: छापती, और फिर छाप
3: मेरे ख्याल में साहित्य एकेडमी के पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स है, मतलब एक ही नवीयत के प्रोग्राम्स नहीं है। मसलन विमेन राइटिंग्स के लिए
1: बिल्कुल
3: अस्मिता नाम का एक प्रोग्राम है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो विमेन फोक है, जो उसके साथ वाबस्ता है, जो लिखती हैं, तो उनकी तादाद तो ज्यादा नहीं है। हमारी जुबान, हमारी लैंग्वेज जो है, इसमें के साथ कुछ दिलचस्प बातें वाबस्ता हैं। जो हमारी सबसे बड़ी शायरा है मेरे ख्याल में, और जो पहली शायरा है जिसको हम पहली मानते हैं,
1: लल आरिफ,
3: वो एक वुमेन थी, वो एक लेडी थी। और इसके बाद दूसरी बड़ी शायरा उसके उस दौर के बाद हबा खातून। लेकिन तादाद ज्यादा नहीं रही। हालांकि हम ये मानते हैं कि कश्मीर की जो भी महिला है वो शायरा है। क्यों? हमारे फोक में जितना कंट्रीब्यूशन हमारी
1: महिलाओं का है,
3: और वो शायद वो दर्ज नहीं होती है कि किसने लिखा, लेकिन एवरी वुमन इज इन ए पोजीशन टू कंपोज सम कपलेट। तो किसी भी शादी पर जाए, कहीं भी जाए, अब उस मतलब जो हमारी फीमेल राइटर्स हैं, वुमेन राइटर्स हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा सकती है। एक अलग प्रोग्राम है,
2: उसमें प्रोग्राम भी है और सेमिनार भी किया गया। और आपको मैं एक बात भी बता दूं कि हम लोगों ने किताब छापी है 20th सेंचुरी वुमेन राइटिंग, और उसमें ऐसी लेडी वुमेन राइटर्स हमने देखी जिन्होंने लिखा है लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाया।
3: सही बात है।
2: तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हमारी ये राइटर्स है, वुमेन राइटर्स, उनको एक एनकरेजमेंट मिले, जो शायद यहाँ के स्टेट के राइटर्स नहीं दे रहे। ये नहीं है कि वो नहीं लिख रही, उस किताब को अगर आप देखेंगे 300 पेज की किताब है।
1: इस सिलसिले में तो एकेडमी काम करते। एक और मैं नूर साहब की तवज्जो एक और चीज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि ये जमाना जो है ना, हम मुख्तलिफ राइटर्स से मुख्तलिफ काम लेते हैं, लेकिन जब रिम्यूनरेशन की बात होती है वो इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये वो जमाना है कि इतने पैसे में इतना बड़े प्रोजेक्ट राइटर नहीं कर सकता।
0: अभी 2 दिन पहले हमने वो सब कुछ रिवाइज कर दिया है, बहुत ज्यादा कर दिए।
3: यहाँ तो
1: मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ।
3: हम एक अच्छी खबर इनको सुनाया, पता नहीं मेरे ख्याल में मालूम होगा नहीं होगा, जो हमारी यहाँ लोकल कल्चरल एकेडमी है, जो वो बेस्ट बुक अवार्ड देती है हर छोटी छोटी लैंग्वेजेस में, उनमें सिर्फ वही लैंग्वेजेस नहीं है, डोगरी और कश्मीरी नहीं है,
1: हमारी गोजरी,
3: 1 लाख रुपए देते हैं। और साहित्य एकेडमी का लास्ट ईयर तक 50,000 ही था,
0: वो भी लाख होने जा रहा है।
2: लेकिन पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज द प्रेस्टीज अटैच्ड टू द अवार्ड, सो प्लीज बेयर इन माइंड।
1: नहीं, अवार्ड के पैसे नहीं, मैं प्रोजेक्ट आप ट्रांसलेशन का काम
2: देते हैं, पैसा देते हैं
1: उनको जो काम करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ अवार्ड का आप 10 ही रुपए रखिए, उसमें तो प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, लेकिन जो काम करते हैं ना प्रोजेक्ट कर में करते
4: हैं। अभी आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साहित्य एकेडमी, द न्यू बॉडी वेरी रिसेंट जस्ट 3 डेज बैक
1: जी
4: मेट एंड थरली रिवाइज्ड द

0: structure.
1: Honorariums and remunerations to be paid for the literary activities.
2: और एक बात और है कि हम साहित्य अकेडमी जो है बहुत ज्यादा पैसा देती है बाकी लोगों के मुकाबले.
0: नहीं वो तो है,
2: प्राइवेट पब्लिशर्स के मुकाबले हम बहुत अच्छा पैसा देते हैं. हिस्ट्रीज लिखने का 25,000
0: जी,
2: इट्स अ बुक ऑफ 250 पेजेस एंड 25,000 रुपीज, इट्स अ नॉट स्मॉल
3: अमाउंट. मोनोग्राफ
2: 10,000 रुपए.
3: पैसे की बात अब ठीक है आ गई बीच में तो बुरी भी नहीं है, लेकिन एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो साहित्य अकेडमी की तरफ से बुक्स पब्लिश होती है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ कोशिशें करनी है हमें. मेरे ख्याल में हमें एग्जिबिशंस करनी है. यस, कल ही मेरे पास एक पब्लिशर यहाँ का आया, उसने हैज गिवन मी एन एप्लीकेशन, ही वांट्स टू ऑर्गेनाइज सम एग्जिबिशन ऑफ साहित्य अकेडमी पब्लिकेशंस. तो मेरे ख्याल में ऐसी एजेंसीज जितनी भी है हमारे पास, अगर हमें कोई इस काम में मदद करेगी कोई एजेंसी की, साहित्य अकेडमी की जो जितनी अच्छी अच्छी किताबें छपती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं बीच में कि दोज बुक्स डोंट रीच द रीडर्स या अवेलेबल नहीं हो जाती है, तो मेरे ख्याल में उस फ्रंट पर हमें काम करने की जरूरत है.
4: उस तरफ हम पहले से तो ध्यान दे रहे हैं
0: जी,
4: और सेल बढ़ रही है. आप देखो कि एक इलाका है हमारा पंजाब में बठिंडा
0: जी,
4: गांव है आसपास, एक हफ्ते में वहां जो किताबों की सेल थी टोटल
0: जी,
4: वो 50 लाख रुपए की थी.
0: किन किताबों की? हर जबान की किताब.
4: हर जबान की किताब, पंजाबी की ज्यादा थी उसमें.
0: अच्छा.
4: और साहित्य अकेडमी का भी मैंने सुना है कोई 34,000 के करीब की सेल थी वहाँ.
0: अच्छा.
4: और बाद में साहित्य अकेडमी की किताबें खत्म हो गई थी, कुछ किताबें
0: अच्छा,
4: मिल नहीं रही थी. इन चीजों की तरफ हम ध्यान देंगे.
3: बहुत अच्छी.
4: हाँ,
3: बहुत अच्छी.
4: और लोगों तक पहुँचाएंगे किताबें.
0: ऐसी खबरें सुन के दिल भाग भाग हो जाता है, खुश हो जाता है.
1: लास्ट ईयर आवर टोटल सेल्स has touched 3 crores.
4: Oh,
1: Saith Academy's books are priced so very less. And 3 crores of books have been sold.
0: ये तो इस कंप्यूटर और नेट के जमाने में अगर किताबों के साथ लोगों को अभी भी दिलचस्पी है तो that means we have to do और हम ज्यादा ज्यादा काम करना चाहिए.
4: We should not be discouraged. किताब की नेट है, सारी दुनिया में है, दुनिया में वेस्ट में भी किताब वापस आ रही है.
2: बिल्कुल.
3: यानी किताब का जमाना वापस आ रहा है तो साहित्य एकेडमी की जिम्मेदारियां बढ़ रही
2: हैं. लेकिन मेरे को इसमें एक गुजारिश करनी है सब लोगों से, क्योंकि हम एयर पे हैं और जो लेखक लिखते हैं, अगर लेखक भी थोड़ा हमारी मदद करे किताब को प्रमोशन में तो हम किताबें बेच सकते हैं कश्मीर जैसी जगह में
0: जी.
2: क्योंकि हमारे जो यहाँ पे लिखने वाले हैं उनकी छोटा इलाका है, एक दूसरे से जान पहचान बहुत है, एक दूसरे को मिलते रहते हैं, अगर वो हमारी मदद करे तो साहित्य अकेडमी और किताबें बेच सकता है. वो भी ऑथर का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा होना चाहिए, वो हम बार बार गुजारिश करते हैं लेकिन किसी हद तक हम लोग
0: एग्जिबिशन कराइए कश्मीर में भी, साहित्य अकेडमी की किताबों की एग्जिबिशन
2: कराइए
0: जबानों में जो हम समझते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और कश्मीरी,
2: पंजाबी
3: भी कर सकते
2: हैं. एग्जिबिशन हमने पिछले साल भी की, हम लोग लेके आते हैं अपनी किताबें. ऐसा नहीं, एग्जिबिशन बहुत होती है. फिर हमारे यहाँ एक दो एजेंसीज हैं जिनके पास हमारी किताबें रखती हैं. मुश्किल ये है कि किताबें उठती नहीं है यहाँ से जल्दी. वो उन लोगों का ये कहना है कि किताबें नहीं बिक रही, लेकिन अगर सब लोग मिलके जो हमारा यहाँ लिटरेरी कम्युनिटी जो हमारी यहाँ है कश्मीर में, अगर वो भी मदद करे तो कोई कारण नहीं है कि किताबें नहीं बिकेंगी, बिल्कुल बिकेंगी.
0: तो इसमें सेमिनार साहित्य अकेडमी की तरफ से हो सकता होते हूँ
2: होते हूँ
0: एक नहीं एक सेमिनार एक कम है. साहित्य अकेडमी कश्मीरी के लिए क्रिटिसिज्म भी बहुत अहम है. क्रिटिसिज्म की वजह से भी जबानें तरक्की करती. क्रिटिसिज्म इज जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बीइंग. तो जब तक आप सेमिनार नहीं कराएंगे ऐसी हमारी जबानों जैसे के लिए, तो हमारी जबान भी ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगी. इसलिए आप एक साल में करते हैं तो 2-3 कीजिए ताकि सब लोग सेमिनारों में हिस्सा ले.
2: हमारी एक प्रॉब्लम है, वी हैव बाउंड बाय द पॉलिसीज ऑफ साहित्य एकेडमी. 24 भाषाएं.
0: हम तो पॉलिसी मेकर्स के साथ ही बात कर रहे हैं
2: ना.
4: अब हम पहले भी कर रहे हैं पर थोड़ा ज्यादा करेंगे, इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि जो कुछ साहित्यकारों ने लोगों को मिलना होता है ना
0: जी,
4: वो प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में और ज्यादा फैला रहे हैं.
0: हाँ, वो ठीक है,
4: वो कोर्सों में पढ़ते हैं लेकिन लेखक के बारे में जानते नहीं होते
0: ना. अगर डायरेक्टली
4: मिलेंगे
0: डायरेक्टली साहित्य अकेडमी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ही सेमिनार कराए, ऑर्गेनाइज हम करें, आपका कन्वीनर करेगा,
4: किताबों की एग्जीबिशन भी लगेगी, सेल होती है.
0: अच्छी बात.
3: तो इसके मतलब हमारे जो डिफरेंट डायमेंशन

0: हैं लिटरेचर के, मसलन कहानीकार हैं हमारे, और हमारे लिटरेचर में, कश्मीरी लिटरेचर में अब जितने भी जनर्स हैं मेरे ख्याल में इंडियन लिटरेचर में, वो तकरीबन सब के सब अब हमारी लैंग्वेज में हैं। तो अलग अलग जनर्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरे ख्याल में, एज रफीक राज राइटली सेड, वन सेमिनार विल नॉट सफाइस फॉर कश्मीरी लैंग्वेज, वी हैव टू, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी साहित्य अकेडमी
1: नहीं, एक वन सेमिनार मींस इट इज नॉट वन सेमिनार, जस्ट इन ए सेमिनार ऑफ ए वेरी बिगर मैग्नीट्यूड, दैट इज बिगर मैग्नीट्यूड, एंड छोटे छोटे प्रोग्राम जो होता है, वी विल बी इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, एंड ऑल्सो वी हैव सम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स वेर ही नॉर्मली ऑर्गेनाइज, बट वन सेमिनार इज समथिंग विच इज वेरी significant, something
2: level.
1: Which is very much discussed in elaborately.
3: Yes,
1: that is what is called one seminar.
0: और जहाँ तक कि translations की बात हो रही है, translations के front पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना है. As Noor साहब rightly said, Kashmir is the subject on which poets from across the country have written. ये कल Noor साहब बात कर रहे थे कि सिर्फ पंजाबी जुबान में बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन 50 के करीब ऐसी कविताएं हैं जो मास्टरपीसेस हैं पंजाबी में,
4: कश्मीर के बारे में,
0: ट्रांसलेट देम इन कश्मीरी, और अगर कश्मीर में भी पंजाब, पंजाब के बारे में बहुत लिखा
3: है, तो आप अपनी मीटिंग में भी कर सकते हैं, वो प्रपोज कर सकते हैं अपनी मीटिंग में भी, जो आपकी हर साल मीटिंग होती है ना शायद,
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मीटिंग तो होती रहती है, रीजनल बोर्ड्स की मीटिंग्स होती है, जनरल,
3: सवाल ये है कि राइटर्स से तर्जमा करवाया जाए,
0: हाँ,
3: क्योंकि एक एक राइटर के पास पांच पांच दस दस साल से
0: किताबें
3: हैं, कर रहा है उनकी, उसकी तरफ तवज्जो दे।
0: देखिए, आई एम एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द राइटर्स फेटर्निटी एंड कम्युनिटी, आई एम देयर रिप्रेजेंटेटिव, बट वन थिंग आई मस्ट टेल पब्लिकली कि हमारे राइटर्स जो है वो भी लिखने में कोई वो पहल नहीं कर रहे हैं। Just yesterday I was going through that agenda of today's meeting. तो मैंने वहाँ
3: enthusiastic नहीं है, क्यों नहीं है?
0: देखिए
3: ये बीमारी
0: पहले तो, पहले तो मैं आपको एक बात बिल्कुल वाजिया तौर पर बताना चाहता हूँ, पहले तो अगर हम किसी को काम
1: नहीं, ये सब यहाँ डिस्कस करने का फोरम नहीं है, ये फोरम अलग चीज के लिए,
0: बिल्कुल आप राइटर्स में कीजिए, वी अपील द राइटर्स कि इफ वी असाइन,
1: नहीं यो तो सी राइटर्स आर वेरी बिजी पीपल, राइटर्स आर
2: बी फोर्स्ड, राइटिंग इज
1: प्रीकंसीव्ड विद लॉट ऑफ देयर ओन एक्टिविटी,
3: दे कांट बी फोर्स्ड टू डू
0: समथिंग, फोर्स की तो बात ही नहीं है,
1: इफ यू कमीशन समथिंग दे माइट नॉट इवन टच इट, दे have their
3: moody,
1: own
3: moody
1: creative
3: people.
1: Writing and everything. So this is a second preference. So we'll have to cope up with this circumstances also, sir. While you know, following up the programs.
3: Bilkul. Barhal, main Professor Satinder Singh Noor sahab ka, Shri A. Krishnamurti sahab ka, jo Sahitya Academy ke.
1: Mera ek, before you conclude your program.
3: Yes, please.
1: You three are Kashmiri sitting here.
3: Yes.
1: Why don't you speak for a minute in Kashmiri language so that we will listen to that lyrical language.
3: Aschi guzarish karan Professor Satinder Noor sahab asti Krishnamurti asti askuri vun hindi asmusti urdu asmusti angrezi asmusti yuhund tavajju at kat kun phirnish koshish zi writer yus chu agar emis tarjamush kam dimo ya so kam dimo yus ne manasan kari dilasan kari سو کام کرناون مکھ گس کی تیت قدم نین تلن یم سیتی آماده گس ہے یہ کریا سو کام گڈنش کت چ تتن ریمونریشن گس بڑاون یوزن ون پروفیسر ستیندر سنگھ نور صاحب
0: تو راز صاحب اگر تو وچھانا چھ یہ ریاکشن شاید چھ فکر تارا نش رن شرن راج نہ سائن صاحب
2: سوری فکری تو کم بولٹ
0: تا استاو یہ امید کہ کاشر پٹ یوز سیمن ون یم سوچن ات من یمن تو فکر تا پر صاحب عمل پروفیسر سنگھ
3: نے جب تک یہ کرشنا مورتی صاحب اور نور صاحب کشمیر میں رہیں گے تو کشمیری زبان کی جھنکار ان کے کانوں میں بڑھتی رہے گی
1: بہت لولی ویری گڈ
3: تھینک یو ویری مچ
4: تو میں
3: پروفیسر سچندر سنگھ نور جو وائس پریزیڈنٹ ساہتیہ اکیڈمی ہے ان کا تہ دل سے ممنون اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مصروفیت کے باوجود ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے جناب اے کرشنا مورتی صاحب جو سیکرٹری ساہتیہ اکیڈمی ہے ان کا بھی میں ممنون اور شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہم سے کچھ باتیں کی اور ہماری زبان جو جنہوں نے ہم سے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ہم کچھ کشمیری میں بولیں تاکہ وہ سمجھ کیونکہ کشمیری زبان کا ردم اور ان کی اپنی

0: कन्नड़ जबान का रिज्म कुछ मिलता जुलता लगता है, और कहीं ना कहीं हम इस जबान के पुरखे और इस जबान का इतिहास कहीं ना कहीं मिलता है। वो मुझे भी कैसे मिलता है, वो हम सबको उस पर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर अजीज़ हाजनी साहब जो कन्वीनर हैं एडवाइजरी बोर्ड के कश्मीरी के लिए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। और मोहतरमा रेणु भान जी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं साहित्य एकेडमी में, वो आज फिर हमारे स्टूडियो में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत ही ममनून हूँ। और मैं उनसे बार बार गुजारिश करूँगा कि जब भी साहित्य एकेडमी का कोई काम हो तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ, क्योंकि आपको दावत देने की ज़रूरत नहीं, ये ज़मीन आपकी है, आप इस ज़मीन की पैदावार हैं। शुक्रिया आप सब,
1: बहुत बहुत नमस्कार महोदय।
2: डिस्कशन टाइम। समीन आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे डिस्कशन टाइम। आज के प्रोग्राम का मौजू था साहित्य अकादमी और कश्मीरी जुबान, शुरका थे प्रोफेसर सतेंद्र नूर सिंह नूर, एम कृष्णमूर्ति, श्रीमती रेणु भान और डॉक्टर अजीज हाजनी। मॉडरेटर थे और प्रोड्यूसर थे रफीक राज, मौनत निसार अहमद बाला। आपने ट्यून किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। समीन 10 बज चुके हैं, अब से लेकर ठीक रात 11 बजे तक आप समाप्त करेंगे प्रोग्राम आपकी फरमाइश। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जावेद अंद्राबी। समाप्त करें एक मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप बखैर आफियत होंगे, खुश खुरम होंगे। आपके भेजे हुए खतूत और ईमेल्स जिन पर यह प्रोग्राम मुनहसर है हमारे सामने मौजूद हैं। इन रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड और ईमेल्स में आपकी पसंद के सुरीले नगमों का जिक्र है जिन्हें सुनकर आप साजो आवाज के जादू को महसूस करके जरूर महसूस होंगे। तो आइए करते हैं साजो आवाज की इस महफिल का आगाज और सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में यह गाना आशिकी फिल्म से। इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ये दोस्त। ये हैं रथ चौक बहादुरपुर खानदेश महाराष्ट्र से संतोष कुमार सोनार, सन्नी, मुंशा, मुंता और हुंडू दादा। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी सजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, बोनो खर्चे और गणेश। मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद बारसी, अनम अब्बासी और अशर अब्बासी। ये दोस्त भी इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। ये हैं सिकंदर राव।

मुबीन अब्बासी और इशरत अब्बासी। छिंदवाड़ा बर्डी मध्य प्रदेश से ये हैं नाना लम्से, तेजस लम्से, जय लम्से और हर्षता लम्से। धतरंगी पाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। जैन टेम्पल लेन करावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नूरन अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। आप सब दोस्तों की पसंद पर पेश है फिल्म आशिकी का नगमा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गीतकार हैं समीर। तो लीजिए समाप्त कीजिए प्रोग्राम का पहला नगमा।

दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सदाबंद किए गए नगमे से हुई। फिल्म थी आशिकी। अब जो नगमा आप सुनेंगे उसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म है प्यार किया तो डरना क्या। इस नगमे को सुनने के लिए फरमाइश की है चिट्टी बांडी बांडीपोरा से इश्तियाक वानी। इनके साथ ये दोस्त भी हैं, ये हैं अशफाक शफी, समीरुल इस्लाम, आजाद हुसैन, आकिब तेली, डार जहूर, फिरदौस अहमद डार, शौकत अहमद ऋषि, जावेद इकबाल डार, मुनीब खांडे, हयात अफजल गनाई और फयाज अहमद भट्ट। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी और रईस दुल्हा अंसारी। पलारी छत्तीसगढ़ से ये मेल आया है। लिखने वाले हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी। ये मेल हमें मिला है कुमार हेड़ा सहारनपुर से। भेजने वाले हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम। गांव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरी, वंदना बाबू, देवयांश और सूरज कुमार ढाक से। पेश है आप सब दोस्तों की फरमाइश पर मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये पुरसोज नगमा। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार रवि। लीजिए, समाप्त कीजिए।

दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म का नाम जिसका नगमा आप कुछ ही देर में सुनेंगे। आवाजें मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की हैं। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बामरादा खाग से गुलाम कादरवानी, शाहीना, अनीसा, अमीना, फुरकान, रिजवान, जैना बेगम और आसिया मकबूल वाली। गाट पलहालन पटन से शौकत जान, उनके साथ ये दोस्त भी हैं। ये हैं डार शबीर, हादिया जान, इरम जान, अरबीना जान, अक्सा जान और जबीना। इसी नगमे को ये दोस्त भी सुनना चाहते हैं। ये हैं मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर यूपी से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी जान, बिट्टू भैया और हिना कौसर। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंडा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ये मेल आया है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से। भेजने वाले हैं संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। आप सभी दोस्तों को इंतजार होगा अपना पसंदीदा नगमा सुनने का फिल्म दोस्ताना से। आवाजें मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसके संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए समाप्त कीजिए।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ नगमा पेश करेंगे। फिल्म है एक नजर। फिल्म एक नजर के इस गाने की फरमाइश की है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। ये हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नौन शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और मंडी शर्मा। ये मेल हमें नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से मिला है। भेजने वाले हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ के अरकान अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर। बाटापारा छत्तीसगढ़ से ये हैं सोहन जोशी जी। तो दोस्तों पेश है आप सबकी पसंद पर फिल्म एक नजर का दुगाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में नगमा है। इस नगमे की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए समाप्त कीजिए।

दोस्तों सन 1966 ईस्वी में टी प्रकाश राव की हिदायत में बनी फिल्म सूरज सिनेमा के पर्दे पर छा गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 5 करोड़ का बिजनेस किया, जो उस साल की दूसरी सबसे मुनाफा कमाने वाली फिल्म साबित हुई। इस तरह से ये सुपरहिट फिल्म के जुमरे में दर्ज हुई। इस फिल्म के नगमे कंपोज किए शंकर जयकिशन, मौसीकार जोड़ी ने। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये मशहूर नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। इस नगमे को सुनना चाहते हैं पद्मा टाकीज, नीपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बिन शाह और राजेंद्र शाह। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और अरारिया सुरलकर। अनारकली विजार जागराऊं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गुआहा मल्होत्रा और सुजा सिंह पाठक। तो पेश है आप सबकी पसंद पर फिल्म सूरज से नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। ये रहा नगमा।

अब पेश है लता मंगेशकर की आवाज में एक नगमा, फिल्म है मेरा गांव मेरा देश। फरमाइश करते हैं सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदेश गुजराती, प्राची और परवीन पुजारी, गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश ज्वेलर, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, आरओ खुराना और एसके पप्पी। ये ईमेल हमें मिला है, लिखने वाले हैं शाहजी नगर देगलोड महाराष्ट्र से संतोष नागरे, सुनैना सुकन्या और श्वेता बागरे, अंकिता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता भोट, निखिल कांगड़ा और तानवी भोट। पेश है आप सब दोस्तों की फरमाइश पर फिल्म मेरा गांव मेरा देश का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा नगमा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में। लीजिए समाप्त कीजिए।

आपने लता मंगेशकर की आवाज में नगमा सुना, फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। अब आइए प्रोग्राम का आखिरी नगमा सुने एक बार फिर मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है द ट्रेन। ये नगमा इन दोस्तों की पसंद है। ये हैं सुखविंदर सिंह और विसल दीवाना कृष्णा पारक दिल्ली से। ये मेल हमें मिला है नागपुर महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं विठल जाधव, अनुसुया जाधव और पवन राजे जाधव। मलिकपुरा त्रिगाम शादीपुरा से फिरोज अहमद खांडे, इम्तियाज अहमद मलिक, मोहम्मद शफी मलिक, मोहम्मद मकबूल खांडे। कापुरा गुलाबपुरा से बशीर अहमद वानी, जरीफा और गुलाम रसूल वाजा। सराय गांदरपुरा से गुलाम रसूल राथर और बशीर अहमद राथर। संबलपुर कंकर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। पेश है आप सब दोस्तों की पसंद पर आज के प्रोग्राम का आखिरी नगमा। मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा है फिल्म द ट्रेन। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनावला ऋषि और उनके साथी छकरी और पेश करेंगे सुबह 11:30 पर, दोपहर 2:30 और सपहर 4:30 पर। इनसे आप सिलसिलावार कलामे शकूर ऋषि, कलामे अजीज ऋषि और कलामे जब्बार ऋषि समाप्त करेंगे। फिल्मी नगमे आप समाप्त करेंगे दिन में 12:10 पर और 2:15 पर।

आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और हम आपसे मुखातिब हैं आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। समीन, इस वक्त हमारी स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक रात के 11:15 और 28 सेकेंड हो चुके हैं। हमारी आज की नशरियात अब बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात लेकर कल सुबह 6:28 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शौकीन हिलाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।